उसने कहा है तो करेगा, क्यों चिंता करती है? बोले ये कहते कहते एक वर्ष हो गया, कब करेगा कब करेगा? बोले करेगा बेटा, तुम ज्यादा चिंता करती हो ना, करेगा, धैर्य रखो, हो जाएगा हो जाएगा। तो एक दिन जो है पंडित जी प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में, और समय तो नहीं आता था उस दिन, पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि पत्नी बार बार उसको टोक रही थी, तो वो संस्कार दिमाग में आ गया। तो पाठ करते करते प्रार्थना करते करते बेटी जवान हो गई, शादी करनी थी, पैसा है नहीं, संपत्ति है ही नहीं, कोई साधन नहीं है, कैसे शादी करें, इतने दिमाग में आ गया और प्रार्थना करते जा रहे थे। तो सर्वांतरयामी, तो हृदय में संकल्प आते ही वो तो उनको पता चल ही जाएगा, है ना? तुम कोई संकल्प करो और भगवान को पता न चले, ये संभव नहीं। तुम संकल्प करो, तुम्हारे पति को पता न चले, तुम्हारी पत्नी को पता न चले, ये संभव है, लेकिन परमात्मा को पता न चले ये संभव नहीं। तो परमात्मा को पता चल गया, हनुमान जी को पता चल गया, बेचारा ये चिंता में रह गया अचानक मेरी प्रार्थना करते करते। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने पंडित को संबोधन किया, पंडित तो चिंता न कर, तेरी बेटी की शादी के लिए कल 10,000 रुपया की व्यवस्था हो जाएगी। उस जमाने में 10,000 तो बहुत होता था, है? आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं। अब आज तुम 10,000 की जगह 10 करोड़ की मांग करो बेटी की शादी में। हम सुनते हैं ना, बॉम्बे में ऐसे ऐसे धनपति भी हैं कि एक बेटी की शादी में 10 करोड़ क्या 50 करोड़ खर्चा करते हैं। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं, बताते हैं, उसने फलाना ने वो सीप में बड़ा भारी शादी की रचाई है, कोई एरोप्लेन ही चार्टर करते हैं, घूमते हैं और शादी करते हैं, है ना? बहुत है, लेकिन उस समय बहुत था वो 10,000 रुपया। कहा कि कल 10,000 मिल जाएगा, चिंता न कर। कहते हैं उसी पंडित के पीछे एक बनिया भी वो खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था हनुमान जी को। पंडित तो हनुमान जी की प्रार्थना में मस्त हुआ, हनुमान का कहा सुना नहीं, बनिया ने सुन ली। ये बनिया अन्यथा नहीं लेना हो, आपको बनिया नहीं कह रहा हूं मैं, बनिया माने बनिया वृत्ति वाला ने सुन ली, समझ गए कि नहीं? ये अर्थ ले लेना, मेरा लक्षणा वृत्ति ले लेना, बादशाह लेके नहीं बैठना है। बनिया केवल वैश्य को बनिया कहते हैं ऐसा नहीं समझ लेना, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली। ब्राह्मण भी बनिया वृत्ति वाला हो सकता है, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली। तो कल 10,000 मिलेगा पंडित को, ऐसा करते हैं आज ही पंडित से समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट। तुरंत जैसे वो पंडित जी पाठ करके प्रार्थना करके जाने लगे, तो बनिया जाकर कहा, पंडित जी देखो एक समझौता करते हैं। बोले क्या? आपको बेटी की शादी करनी है ना? बोले हां। ऐसा करते हैं, आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, शर्त यह है कि कल जो दक्षिणा मिलेगी वो सब मुझे देना। पंडित ने विचार किया कि यहां रोज एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, अचानक 5,000 के एग्रीमेंट आ रहा है, क्यों छोड़े? बोले ठीक है 5,000 दे दो। तो बनिया ने फट से 5,000 दे दी, क्योंकि एक ही दिन में डबल हो जावे एक रात में, इससे बढ़कर और बिजनेस क्या हो सकता है, बोलो है? एक रात में डबल हो रहा है कि नहीं, उसने ये सोच ली। तो 5,000 दे दिया पंडित जी, चले गए 5,000 लेकर, जाके पंडिताइन को दिया, ले 5,000 है, अब बेटी की शादी होनी हो जाएगी, तैयारी करो। उसको पता नहीं था कि कल 10,000 मिलेगा। तो दूसरे दिन पंडित तो गया प्रार्थना करने बैठ गया, बनिया भी पहुंच गया। तो अब मिलेगा तब मिलेगा, इसको दक्षिणा 10,000, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा, है?
12 बज गया, 1 बज गया, कोई भी दक्षिणा लेकर नहीं आ रहा है वहां। और कल कहा था भगवान ने 10,000 दक्षिणा मिलेगी तुमको, ये क्या बात है। पंडित तो अपने नियम अनुसार पुष्प पाठ प्रार्थना सब कुछ की घर के चलने लगे। बेटा तुमने कहा था कि कल जो चढ़ेगा सब मुझे देना, तुम घाटे में चले गए, एक भी पैसा नहीं आए देख लो। बेचारा पंडित के सामने मुख छोटा करके कहा कि हां देखो क्या करें, ये तो ऐसे ही होता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है महाराज, नीचे ऊपर होता ही है। पंडित के सामने तो उसने ठीक कर दिया। जब पंडित गए तो उसको गुस्सा आया, हनुमान जी को मारा एक थप्पड़ कि हनुमान भगवान होकर झूठ बोलते हो, मेरा 5,000 बेकार चला गया, भगवान होकर भी झूठ बोलते हो, मारा एक थप्पड़ तो वो हाथ वही चिपक गया। अब वो हाथ छोड़ाने चाहता है, छोड़ता ही नहीं, जोर लगा रहा है, और गुस्सा हो गया, मेरा 5,000 तो गया और ऊपर मेरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर लात मारा तो वो भी चिपक गया, लात भी चिपक गई। अब तो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, रो रहा है। उधर बच्चे लोग विचार करने लगे, आज पिताजी गए कहां, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे, अभी तक दुकान नहीं पहुंचे, हमेशा हमसे पहले जाकर दुकान खोलते थे, अभी तक दुकान ही नहीं खुली है, कहां गए, हनुमान मंदिर जाते थे दर्शन करने, क्या हुआ। तो बच्चे लोग आए, क्योंकि चाबी तो उसी के झोले में था, किसके, पिता के। बच्चे लोग आए तो हनुमान से आलिंगन करके चिपक के बैठा था उसका बाप, कहे कि पिताजी ये कौन सी भक्ति है, ऐसा भी कोई भक्ति होता है तो भगवान को चिपक के छाती से लगा के खड़े हो गए, इतना समय हो गया, दुकान खोलना था, चाबी लेकर बैठ गए, चलिए। बेचारा बाप रोने लगा, अरे बेटा मैंने पकड़ रखा हनुमान को, यही मूर्ख पकड़ रहा है मुझे, छोड़ नहीं रहा है, है? तो बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना, हे भगवान ये क्यों ऐसा किया, क्या अपराध हो गया मेरे पिताजी से, है क्षमा करना महाराज, जो करना है, 1.25 किलो लड्डू कहो तो लड्डू ला के चढ़ाता हूं, हम चढ़ाते हैं, आप जो कहो वो करेंगे, आप हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज। बच्चों ने जब प्रार्थना की तो हनुमान ने कहा कि बेटा मैंने मेरे भक्त पंडित को 10,000 देने की बात कही है, 5,000 कल तेरे बाप ने दिया है, अब 5,000 उस पंडित को दे के आओ तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं, उसकी बेटी की शादी करनी है। हाँ, तब वो बच्चे गए दौड़ के उस पंडित को 5,000 दिया तो तब जाकर ये कौन छूटा, बनिया छूटा हो, हाँ छूट गया, तब जाकर छूटा, तब विश्वास हुआ कि ओहो योगक्षेम वहां में, हम भगवान तो थप्पड़ मार के भी लेते हैं, हाँ उनको बहुत चिंता है भाई, कैसे व्यवस्था करनी है, किधर से व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था वो करते हैं, लेकिन हम, वो बनिया तो कहेगा कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे लगता है उसने भी कभी किसी को थप्पड़ मारकर लिया था, समझे कि नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है, कभी उसने किसी के थप्पड़ मारकर लिया था तो आज थप्पड़ मारकर देना पड़ रहा है, थप्पड़ खाकर देना पड़ रहा है, तो ये काम परमात्मा की है, ये बात योगक्षेमम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग, प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम, योगक्षेम बाहम्यम, यही तो कहा है, वही तो शंकराचार्य जी ने कहा। बटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वाय कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवत अधीनं पशुपते त्वदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि। भक्त को ये बात पूरी तरह निष्ठा के साथ जीवन में अपनानी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें,
तो हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मन परमात्मा के चरण में लगे रहे, यही प्रार्थना उत्तम प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ஆன்மீக சக்தி ஆதய சக்தி ரெண்ட சக்தியை பிரிக்கிறார். இப்ப பொதுவா இவர் தார்க்கிகால் சக்திய ஒத்துக்கிறது இல்லை இல்லையா, சக்தி இருந்த பதார்த்தாந்திரம் நியாயபோதனையிலேயே ஆரம்பத்திலேயே வருது. சக்தி ஹி நாங்கீக்ரியதே மீமாம்சகாக அங்கீகுருவந்தி ஏதேனா அங்கீகுருவந்தி தஸ்ய கண்டனம் குருவந்தி தத்ர த்வேதா தத்ர ஸ்வாபாவிக சக்தேரேவ தத் வன்னௌ தாஹானுகூலாய சக்தி சா ஸ்வாபாவிக சக்தி. ரெண்டு விதமான சக்தியை ஒத்துன்றிருக்கார் மீமாம்சகர். ஒண்ணு வந்து ஸ்வாபாவிக சக்தி, இன்னொன்னு ஆதேய சக்தி. சகஜ சக்தி ஆதேய சக்தி இது நாமகரணம் குருவந்தி. சக்தி த்வேதா சகஜ சக்தி ஆதேய சக்தி இது இது இதன் ரெண்டும் ஜன்யந்தான். பரந்து கிம் பவதி வன்னௌ யா சக்தி சா சகஜ சக்தி. வன்னியோடு சேர்ந்தே வரக்கூடிய சக்தி இல்லையா, வேற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால திருப்பி கொண்டு வந்து சேர்த்தது இல்ல. வன்னௌ யா சக்தி சுபாவதாக வருத்தது அது சா சகஜ சக்தி உச்சது. ஆதய சக்தியினால் காரணேன புத்திபூர்வகம் உற்பாதிதா சக்தி இத்தியாதிகம் பவதி தத்ர சாமர்த்தியம் உற்பாத்தியதே உற்பாத்தியமானம் சாமர்த்தியம் ஆதய சக்தி ஆதீயமான சக்தி ஆதீயதே இத்துக்தே கொண்டு வர்றதுன்னு அர்த்தம். தது அதிருஷ்டம் அப்படி ஆதய சக்தி இத்தனை மீமாம்சகை வியவஹ்ரியதே. வ்ரீஹ்யாது ப்ரோக்ஷணேன அதிருஷ்டம் ஜாயதே. வ்ரீஹ்யாது ப்ரோக்ஷணேன அதிருஷ்டம் ஜாயதே இயம் இதம் அதிருஷ்டம் பூர்வம் நாஸ்தி நாசீத். தரிஹி ப்ரோக்ஷணேன உற்பன்னம் அதிருஷ்டம் தது ஆதய அது ஒரு சக்தி அதுக்கு ஒரு ஒரு சாமர்த்தியம் கிடைக்கிறது. அந்த ப்ரோக்ஷணேன ஜாயமானம் அதிருஷ்டம் வர்த்ததே செய்தே தசிய அக்ரே உபயோக அந்நதா தசிய. இப்ப இந்த சம்ஸ்காரங்கள்னு சொல்றது இல்லையா, எத்தனையோ சம்ஸ்காரங்களுக்கு பகுவிதா சம்ஸ்கார ஆக்கிரியந்தே பிரதமதா. எந்த கர்மா பண்றதா இருந்தாலும் அந்தந்த திரவியங்களுக்கு சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் தேன கஷ்டன சக்தி விசேஷா தத்திர உற்பத்தி அதிருஷ்ட ரூபா. இதன் சர்வம் ஆதேய சக்தி இது மீமாம்சகேன உச்சது. தது ரெண்டு விதமான சக்தி துவயமபி உற்பத்தியமானமேவ சகஜ சக்தியா இருக்கட்டும் ஆதேய சக்தியா இருக்கட்டும் தது இதானி வன்னௌ சகஜ சக்தி உச்சதே. பரந்து ததபி உற்பத்தியதே கலு இதா வன்னீர் உற்பத்தியதே வன்னேரேவ உற்பத்திரஸ்தி அஸ்மாகம் இதானிம் அஸ்மாகமபி ஆத்மனி அநேகே சம்ஸ்காராக கிரியந்தே தேன சக்தயஹ உற்பத்தி சா சர்வாபி ஆதேய சக்தி கர்மானுஷ்டானேன ஆத்மனி அதிருஷ்டம் ஜாயதே இத்துக்கு ஆதேய சக்தி சா. அந்த அதிருஷ்டத்துக்கு ஆதேய சக்தி மீமாம்சகர் பேர் வச்சிருக்கா. ஷோடச சம்ஸ்காராக கிரியந்தே தேன ஆத்மா சம்ஸ்கிரியதே இது இது எப்படி வந்ததுன்னா ஆதேய சக்தி அது வந்த வந்திருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து திருப்பி போயிடும். இதன் சிரமம் ஏன் பிரசங்காது உத்தம் தாவதே வயம் அநேக விஷயாக அவகந்தவியா இது கிருத்வா அத்திர அபேட்சா நாஸ்தி அஸ்ய பரமாத்மனா யா சக்தி ஆதேய சக்தி நாஸ்தி ஸ்வாபாவிகி சக்தி
1: ஞான பல கிரியா
0: அத்திர ஸ்வாபாவிகி சக்தி இது வக்தும் சக்கியதே தோஷோ நாஸ்தி. பரந்து ஸ்வாபாவிகி சக்தி அப்படி ஜன்யா பவதி வன்னேஹ உத வன்னிரேவ ஸ்வாபாவிகி நாஸ்தி கலு வன்னேர் ஜன்யத்வா வன்னேர் சக்தி அப்படி ஜன்யா பவதி எதுபி சா ஸ்வாபாவிகி பரந்து ஜன்யா பவதி உத வன்னேஹ ஜன்யத்வா அத்திர தான் பரமாத்மனா சக்தி ஸ்வாபாவிகி பரந்து ந ஜன்யா உத பரமாத்மனா அஜன்யத்வா பரமாத்மனா அஜத்வா தத் சக்தி அப்படி அஜா அக்ரே
1: கதாச்சிதபி ந நிர்விசேஷத்வம் இத்யனேன சித்தம்
0: அனேன கிம் சூசிதம் அத்வைதமதம் ஒத்துக்கிறதில்லை நிர்விசேஷத்வம் கதாபி நேஷ்யதே அஸ்மாபிஹ இதி சித்தம். சிதசித் பிரபஞ்ச விசிஷ்டத்வமேவ பரமாத்மனஹ ஸ்வரூபம் இதி ஸ்வீக்ரியதே.
1: சக்தே பரிணாம அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்வம்
0: அத்ர ஏக ஏக ஏகம் க்ஷணம். சிதசித் பிரபஞ்ச ரூப சக்தின்னு சொல்றார் இல்லையா, பிரபஞ்ச அனுகூல சக்தி தானே சொல்லணும். சக்தேஹ பரிணாம இது கிருத்வா பரிணாம பரிணாமினோ அபேதம் ஆலோச்சிய எவம் வியவஹார கிருதா. சிதஜித் பிரபஞ்ச பிரபஞ்ச ஏவ சக்தி இத்யுக்தே தத்கதம் போஹ பிரபஞ்ச சக்தேஹ காரியம் கலு அதா தரி பிரபஞ்ச அனுகூல சக்தி இது லேகனீயம் ஆசீத் இது அஸ்மாகம் சங்கா பவதி சத்யம். பரந்து ஏவம் பி லிகிதும் சக்யதே பரிணாம பரிணாமினோ அபேதம் ஆலோச்சிய ததா லிகிதம் இது மந்தவ்யம்.
1: சிதேவ்
0: சக்தி சித்ரூபா இது அஸ்தி. பரந்து तत्र अचिदात्मकत्वम् आदाय परिणामः वक्तव्यः. तद्विषये किञ्चित् शास्त्रविचारः अग्रे भविष्यति, कथं परिणामः इत्यादिकं न उपपादितम् एतावता, तत् पश्यामः अग्रे आगमिष्यति.
1: அப்பரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தி,
0: அது ரெண்டும் ரெண்டும் சேர்த்து சொல்லணும் போல இருக்கு. இந்த அச்சிதம் சோபி கஷ்டன் அபேட்சதே தத்ர
1: மாயா
0: பரிணாமார்த்தம் மாயாயா அத்வைத ரீத்தியா து அஸ்மாகம் ஜட ரூபாய மாயாயா சர்வதா சைதன்யம் நேஷ்யதே. மாயாயா ஜட சக்தி ரேவசா பரமாத்மனா சக்தி இத்துச்சதே, பரந்து ஜடாத்மிகா ஏவ ஆகரேஷு சர்வம் எல்லாமே தெரியுது. அது நம்மளே அது அந்தந்த தரிசனத்துக்கு எது சரியா இருக்குமோ அப்படி அது செட்டிங் பண்ணணும். அது இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம் பாரு, சிச்சக்தி சேதனா ரூபா ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா, ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டுருக்க. சிச்சக்தின்னு இருக்கு, ஜடசக்தின்னு இருக்கு. என்ன பண்றது, சிச்சக்தி சேதனா ரூபா ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா திரட்டம் எப்பசியாமா.
1: அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தித்துவம்.
0: அத இப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபமாக வர்ணனம் பண்ணி உபாசனைக்காக அப்படி பண்றது, அது இருக்கட்டும். ஒரு தேவியாக வர்ணனம் பண்றது அதுனா வேற என்ன இதெல்லாம், அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபேன பிரகல்பிய ஆராதனார்த்தம் வர்ணியதே ஸ்தோத்ரேஷு, அதான் விவிதம் வர்ணனம் பவதி. அகே அகே பட்டாம அது சமாபனியாமி. அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம், அபரிச்சின்னா இயம் சக்தி, அதுக்கு பரிச்சேதம் கிடையாது. பரிச்சேதம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது ஒண்ணுமே கிடையாது, இதனாலயும் பரிச்சின்னம் இல்ல. அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தி மற்றும் அனந்த சக்தி. அனந்தம்னா அனந்தம்னா அசங்கியாகம் இத்தியர்த்தே பிரயோக அஸ்தி அனந்த சப்தசிய, எவ்வளவு சொல்ல முடியாது. அப்ப அனந்தம் இது பத பிரயோக அஸ்தி, பரந்த அத்த தஸ்மின் அர்த்தேன அந்தோ நாம பரிச்சேத நவித்யதே அந்த எஸ்ய சக அனந்த அபரிச்சின்னம் இத்தியர்த்தே சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா இத்தியத்ராபி ததேவ. அன்யதா அன்யதா ஏகத்வம் அநேகானி பிரம்மாணி இது கலு உத்தம் ஸ்யாத். அனந்த அனந்தத்வம் நம அசங்கியாகத்வம் இத்தியர்த்தச்சேத் ஏகம் பிரம்மா இது தியக்தம் ஸ்யாத், அதஹ ததா சஹ அர்த்தா தத்ர நாஸ்தி.
1: பரந்து அத்ர து சக்திரேவ கலு ததா உத்தம் ஸ்யாத் வக்தும் சக்தி.
0: சக்திரபி விசித்ரா சக்தி உத்தம்
1: விவிதா இதம் அத்ர து சக்திர விவிதேவ
0: ஸ்ருயதே. சக்தி விஷய வக்தும் சக்யதே பரந்து அநேகத்வமபி வக்தும் சக்யதே
1: தத்ர உபாரிய உபாதி
0: பதாந்திரேண உத்தம் கரு தத்ரபி வியாக்யானம் ததா நாபேக்ஷதே ஏனா அத்ர விசித்ர சப்தேன தத்ர அநேகத்வம் அநேகத்வம் எதி விவக்ஷிதம் ததானிமபி விசித்ரா இதி உத்தம் கரு
1: அனந்தாபிரேவ சக்திபிஹி ஜகதஃ ஜனகம் சாசகம் ச ப்ரஹ்ம பவதி.
0: சாசகஞ்சப் பிரம்ம பவதி சிருஷ்டிகர்த்ரு பரிபாலன கர்த்ருச்ச பவதி.
1: சாசகம்
0: சாசகம் பரிபாலன கர்த்ரு சாசகம் சாசகா இல்ல சாசகம் பிரம்மா நபும்சகலிங்கம். அதனால ததாஹி
1: ததாஹி ஸ்ரூயதே ஏக ஏவ ருத்ரோ ந த்விதீயாய தஸ்துஹு ய இமா லோக
0: தஸ்துஹுன்னு சாந்தச பிரயோகம் தஸ்தௌன்னு வரணும், தஸ்துஹு இது சாந்தசம் ரூபம்.
1: தப்பு இல்ல பகுவச்சனம் ஏக வச்சனம் தஸ்து ஏக வச்சனம் தஸ்து ஏக வச்சனம் ஈஷினீபிஹி யஸ் சர்வான் லோகா நீஷதஹ ஈஷனீபிர் ஜனநீபிஹி பரமசக்திபிஹி இத்யர்த்தி.
0: அத்ர கிஞ்சித் இதோபி அஸ்தி துரியமிமம் லோகம் ஈஷதே ஈஷனீயுஹு ஜனநீயுஹு, அதொன்னும் கிடையாதா? அத்ர கதம் வர்த்தது இதம் குத்ரத்யம் வாக்கியம் இது மயாபி ந ஜ்ஞாயதே, மயா ந திருஷ்டம் ஏதாவதா.
1: புஷ்பம் ஸ்தீஷி புஷ்பம் ஸ்தா
0: ஏவம் வா
1: அதர்வஷீஷி அதர்வஷிரஹ
0: உபநிஷத் அஸ்தி வா, தத்ர மயா ந படிதா தத்ர திருஷ்டம் தத்ர ஸ்யாத். அதர்வசிராக இது உபனிஷத் அஸ்தி, அதிலிருந்து நிறைய எடுத்திருக்கா இதுல திரஷ்டவியம் எக்கவாரம் தத்ரஸ்யா ஈசனீயு ஜனநீயு துரியம் இமம் லோகம் ஈஷதே ஈசனீயு ஜனநீயு ஈசனீயு இது சுபந்த பதம், அது திகந்தம் இல்ல. ஈசனீயு அஸ்தி பதி பதம் அத்தை வியாக்கியானம் கிருதம் அஸ்தி வியாக்கியாக்காரை ஆச்சாரியை. இமம் லோகம் சுத்தம் சுத்தமிஸ்ர அசுத்தாத்மரூபம் லோகத்ரயம் துரியம் உக்தலோகத்ரயாபேக்ஷையா சதுர்த்தம் லோகத்ரயம் இத்யஸ்யாபி கிஞ்சித் வியாக்கியானம் கிருதம். இமம் லோகம் சுத்தமிஸ்ர அசுத்த அத்வரூபம் லோகத்ரயம், சுத்தவும் மிஸ்ரவும் அசுத்தவுமா இருக்கக்கூடிய லோகத்ரயம், ததோபேக்ஷையா அந்நது துரியம் உக்தலோகத்ரயாபேக்ஷையா சதுர்த்தம் அத்வநாம் அத்வபதே ஸ்ரேஷ்டஸ்ய அத்வநஃ பாரமசீயே பாரமசீயேதி சர்வாதிக சர்வாதிகாரி பிரேப்சனீயத்வேன ஸ்ருதிசித்தம் அத்வநாம் மத்யே அதிஸ்ரேஷ்டஸ்ய சுத்தாத்வநஃ அப்யுபரி ஸ்திதம் பரமாகாசரூபம் பரமபதஞ்ச இது அஸ்து. ஈஷதே ஈஷ்டே ஈசனீயுஹு இது பதம் கிரஹீதம் அஸ்தி இதைஹி. ஈசனீயுஹு ஈசனானுகூல இச்சாசக்திமான் ஜனநீயுஹு ஜனனானுகூல இச்சாசக்திமான் ஈசனம் ஐஸ்வர்யம் ஜனனம் ஜனைதிருத்வம் இத்தியாதி வியாக்கியானம் கிருதம் அஸ்தி. தரி தத் பதம் வர்த்ததே இத்தியாதி ஞாயிது அஸ்து. சக்தி சக்தி சக்தி காமிக்கிறதுக்கு ஸ்ருதி எடுத்திருக்காரு, வேற ஒன்றும் இல்ல.
1: அனந்த சக்தி மத்வாத் பிரம்மணஹ அபரிச்சின்ன பிரபஞ்ச சமவாய் காரணத்வம் சித்யதி.
0: சமவாய் காரணம் இது தூ உபாதான காரணம் இத்தியர்த்தே பிரயுக்தம். பிரபஞ்சம் பிரதி உபாதான காரணத்வம் சித்யதி குதஹ சக்தி துவாரா ஸ்வரூபேண தோ பரிணாமம் பரிணாமம் ந கர்த்தும் சக்யதே நேஷ்யதே சமவாயினீ கதம் சக்தி பவதி சமவேதா கலு தரி போதிய பாஷையா உச்சதே சேத் ததா சமவேதா இது கலு வக்தவ்யம் அஸ்து. தத்ர சமவேதம் சமவாயி இத்யாதி சப்தாஹ வஸ்துகத்யா கதா பிரயோக்தவ்யா சமவாய சம்பந்தத்தை வச்சிருந்து நம்ம வேலை பண்றதா இருந்தா தான் எடுக்கணும். சமவாய சம்பந்தத்தை ஒத்துக்கிறது இல்ல. தரிஹி
1: சக்தி தரிஹி பிரம்மணி விசிஷ்டத்வம் கதம் கேன சம்பந்தம்
0: தாதாத்மிய சம்பந்தேனா இது வதந்தி. தாதாத்மிய சம்பந்தேனா உபாதான மமதிரியாக்கியேரப்பாக்கமுடியாது அந்த சக்திசக்தி மதோஹோ அபேதா இது. நைய்யாயிகைஹி தத்ர சமவாய சம்பந்தஸ்ய ஸ்தலானி யானி உச்சந்தே தத்ர சர்வத்ராபி தாதாத்மியம் குணகுணினோஹோ தாதாத்மியம் க்ரியா க்ரியாவதோஹோ விசேஷ பதார்த்தத்தை
1: ஒத்துக்கிறார்.
0: நைய்யாயிகால் சமவாயத்துக்கு எந்த ஸ்தானம் கொடுத்திருக்காரோ அந்த இடத்துல தாதாத்மியம் வரும் சொல்றேன். ததர்த்தம் உத்தம்
2: அஷ்டாபிதானாதிகரணம் and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Ramsarathena Parishinjami Ritayam Parishinjami Satyam Parishinjami Ritayam Parishinjami Ritayam Adhyaradarsam ప్రాణాదిత్యమేవ్యేరసాయంజతే అగ్నినా నిత్యం ప్రాతస్థ
2: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address, and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. You are listening to shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya.
5: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address, and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: So we dhoondte dhoondte Maharshi Kapil ke ashram mein jaate hain. Wahan ek khambe se bandhi hui ashw ko dekhkar inhe bahut krodh aata hai और महर्षि के आश्रम में उत्पात शुरू कर देते हैं। इधर महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं, उत्पात से उनकी समाधि भंग हो जाती है, उन्हें बड़ा क्रोध आता है। उनके क्रोधाग्नि से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। इधर दूत ने महाराज सगर को समाचार सुनाया कि महर्षि कपिल के आश्रम में आपका यज्ञीय अश्व बना हुआ है और महर्षि के कोप से 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं। सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान जाते हैं, जाकर महर्षि की प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमारे भाइयों से भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम यज्ञ अश्व को ले जाओ और अपने यज्ञ को संपन्न करो। अंशुमान ने पूछा कि जो हमारे भाई जलकर राख हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म साप से दग्ध हुए लोगों का उद्धार केवल गंगा ही कर सकती है। तुम भगवती गंगा की तपस्या करो, गंगा प्रसन्न होकर जब धरती पर आएगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। अंशुमान अश्व को ले जाते हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, तदनंतर तपस्या करने लग जाते हैं। तीन पीढ़ी तपस्या की इसके बाद गंगा का अवतरण होता है। जैसे हम कोई जैसे किसी के दादा दुकान खोले, उसके बाद पिता फैक्ट्री खोलता है, और जो पुत्र होता है उस फैक्ट्री के द्वारा संसार में विस्तार करता है। इसी प्रकार से महाराज अनुसुमान तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के सुपुत्र जब महाराज भगीरथी ने तपस्या करी, तब जाकर भगवती गंगा प्रसन्न होकर दर्शन दिया। गंगा ने कहा, तुम वरदान मांग लो। गंगा के कहने से ये पुनः प्रार्थना की कि मां, मैं अपने भाइयों को उद्धार के लिए तुम्हें धरती पर आमंत्रित करता हूं। भगवती गंगा ने कहा, मैं तो पृथ्वी पर चलने को राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन रोकेगा, हमारे प्रवाह को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी से मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि भगवान शंकर ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। दोबारा पुनः हिमालय जाते हैं। वहां एक शिव की पिंडी बना करके भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। भगवान शिव महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं, वरम ब्रूहि, वरम ऋणीष्व। महाराज भगीरथी हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान शंकर दिव्य मुद्रा में बरधस्थ होकर दर्शन दे रहे हैं। महाराज भगीरथी ने कहा कि भगवती गंगा ने कहा है, मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवती गंगा के वेग को संभालने के लिए पधारिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। इधर प्रसन्न होकर भगीरथी आते हैं। जैसे ही ब्रह्मांड को भेदन करती हुई गंगा जी धरती पर पधारती है, उसी गंगा जी का चित्रण इस 17वें श्लोक में किया गया है कि जो गंगा आकाश को व्याप्त करके रखी है, उस गंगा की शोभा कैसी है। तो जिस प्रकार से जल में सूर्य चंद्र तारा प्रतिबिंबित होते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है, इस तरह से तारा गण के समुदाय से, उनके प्रतिफलन से भगवती गंगा की शोभा उज्जवल फेन के समान बहुत ही सुंदर लग रही है। वही गंगा जब भगवान के सिर में आती है, तो वह गंगा जी मानो चमकती हुई एक सुनहरा लकीर के समान भगवान शंकर की जटा में समा जाती है। जटा में भगवान शंकर उसको लपेट लेते हैं। भगवान शंकर में के जटा में जब गिरती है, तो प्रीखत लघुदृष्ट शिरसिते, बहुत छोटी सी तारा के समान वह टिमटिमाने लगती है। वही गंगा के द्वारा जिस सागर को कुपित होकर अगस्त ऋषि ने पी लिया था, जो सागर खाली हो गया था, उस गंगा के प्रवाह से पूरा सागर भर जाता है, और उस समुद्र के द्वारा ये जगत द्वीपाकार रूप में परिणत हो जाता है। तव दिव्य अपुह धृत महिमम, आपके महिमा के विषय में क्या कहना, आपकी बड़ी दिव्य महिमा है। यह तो एक ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य है। इधर हम विचार करें कि जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का जब अवतरण हुआ, ज्ञान गंगा का अवतरण श्रुति के अनुसार ज्ञानम इच्छित शंकरा, भगवान शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये सगर जीव ही सगर है, गरेण सहित सगर, गर बोलते हैं जहर को, वासनाओं का जो जहर है जिससे मनुष्य पीड़ित रहता है, यह विद्या कामना वासना ही तो जहर है, इसके साथ यह जीवात्मा पैदा होता है। ये 60,000 पुत्र ये हमारे मन की अनंत वृत्तियां हैं, इन अनंत वृत्तियों से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, सारे वृत्तियों को के निरोध से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। जो अनादिकाल से जीव और ब्रह्म के बीच में वासनाओं का खाई बना हुआ है, उस खाई को यह वेदांत जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान पाटने का काम करता है। यह जीव ही सगर है, मन के अनंत वृत्तियां ही 60,000 पुत्र हैं, और जब मनुष्य ऋषि महर्षियों का आश्रय लेता है, सदगुरु का वही कपिल महर्षि है, उनसे प्रेरित होकर के भगवान शंकर से दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठाचार्य जी कहते हैं, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज का यह कथन है, तत्मस्यादिवाक्योत्थम सम्यक दिजन मात्रतः अविद्या सह कार्येण नासीद अस्ति भविष्यति। तत्मस्यादि से उत्थ जो ज्ञान है वह ज्ञान अविद्या को समाप्त करके स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह जो ज्ञान है इसी ज्ञान के द्वारा जीव परम शांति को उपलब्ध होता है, दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो परम शांति को उपलब्ध करा सके। आगे विचार करते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर,
7: रथोणीयंता सतधृतिरगिन्द्रो धनुरथो रथांके चंद्रार्को रथ चरण पाणी सर इति दिधोस्ते कोयम त्रिपुण तृण माडंबर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुदिंत्रा प्रबुदिय।
6: तथक छोणी यंता, अब यहां पर ज्ञान गंगा के महिमा को बतला रहे हैं, ज्ञान होने पर क्या होता है। इधर एक बड़ा भारी त्रिपुरासुर है, भोगी और योगी दोनों ही तपस्या करते हैं।
8: भोगी की तपस्या का लक्ष्य होता है शक्ति संचय करके भोग करना, साम्राज्य को बढ़ाना, और योगी तपस्या करता है वह तपस्या से ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, यदि वह सत्संगी है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उस धन का सदुपयोग करता है, सुंदर धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मठ मंदिर संतों के सेवा में लगाता है, और वह उस धन के द्वारा देवाचरण करके परम गति को प्राप्त करता है। और वही धन किसी अविवेकी के पास ना समझ के बात है तो वह अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगों में उसके धन खर्च होते हैं, केस मुकदमे में खर्च होते हैं, जुआ शराब में खर्च होता है, क्लेश में, कलह में, लड़ाई झगड़े में खर्च करता है। कोई दान के लिए आए तो एक कौड़ी नहीं दे पाता है, परंतु
6: कि काले कोट वाले को देवराज के दूत है, इनको जो है हमेशा वह अपने धन को उसी में खर्च करता है, अर्थात दुरुपयोग में अपने धन को लगा देता है। एक ही धन है, ज्ञानी सदुपयोग करता है, धन से परमार्थ को सिद्ध करता है, परमार्थ के साधन में लगाता है, और जो अज्ञानी है उस धन के द्वारा अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है। स्वयं वेदव्यास भगवान कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहे न। धन ही नहीं, अपने आयु का ज्ञानी सदुपयोग करता है तो अज्ञानी दुरुपयोग करता है, निद्रिया कलहे न। आप लोग भगवान कृपा से इससे मुक्त हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, उठकर जल्दी स्नान करके नित्य कर्म करके 7 बजे प्रेमपुरी पधार जाते हैं। अन्यथा विवेक न होता तो आप 8 बजे तक सोते और 9 बजे तैयार होके सीधा ऑफिस में दौड़ते। जैसे एक मुमुक्षु तपस्या करता है वैसे एक व्यापारी भी करता है। जो व्यापारी तपस्या करता है उस व्यापारी की तपस्या का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। व्यापार ही बड़ा भारी कष्ट होता है, पर वो जो कष्ट तपोमय है उसके द्वारा मात्र वो धन संचय करता, धन भी भोग के लिए, न वह उससे दान करता है न दीन दुखी गरीब की सेवा करता है। तो दोनों में इतना ही फर्क है। इधर यहां पर भी एक बड़ा भारी जो असुर है जिसका नाम है त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। उसके वरदान का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वह यह है कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है। परंतु वह तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो प्रसन्न कर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तू वरदान मांग। तो ब्रह्मा जी से वरदान में वह मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी किसी से मौत न हो। आसुरी प्रकृति वाले को मौत से बहुत भय लगता है, सबसे पहला उनका मांग होता है अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अमर बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अमर तो केवल तत्व ज्ञान से हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मता है वह मरता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो मरेगा तो जन्मेगा, जो जन्मता है सो मरता है। इसलिए तू दूसरा वरदान मांग ले। त्रिपुरासुर विचार कर अमर के समान वरदान मांगता है कि आप कृपा से हमें ऐसा 3 महल दीजिए, विमान बनाइए, जो देवताओं से मनुष्यों से असुरों से अभेद्य हो और उसका भेदन भी हो, तो तीनों एक साथ हो तभी जाके भेदन हो सके। एक लौह में विमान, दूसरा चांदीमय, तीसरा स्वर्णमय, 3 विमान वरदान में मांगता है। उस विमान पर सवार होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। सारे देवता भाग खड़े हुए, कंदराव में जाकर तपस्या करने लगे। एक छत्र ब्रह्मांड में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग भग कर कैलाश जाते हैं, भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, महादेव त्राही माम त्राही माम। त्रिपुरासुर पूरे संसार में आतंक मचा दिया है, आप कृपा करके इसका बल कीजिए, इससे हमें निजात दिलाइए। त्रिपुरासुर सबसे पहले देवताओं की ब्राह्मणों की पूजा बंद करा दी, यज्ञ याग बंद करा दिया और कहा कि मत्तः परतरम को अन्य, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक सबकी आत्मा ब्रह्म ईश्वर हूं, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। सबको ऐसा उपदेश करके यज्ञ याग सत्कर्म से सबको निवृत्त करा दिया। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा महादेव को सुनाई तो महादेव देवताओं को आश्वासन देकर विदा करते हैं और स्वयं ही त्रिपुरासुर के संहार के लिए पधारते हैं। रथस्थोणी यंता, त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है, सबसे अभेद्य है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथ चरण पाणी जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरा टू तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पुर खलक्खट एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उसे विद्ध होकर तीनों पुर में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। यह तो एक पौराणिक तथ्य है, आई विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधी लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पितृ देव भव पिता को साक्षात महादेव माने, आचार देव भव गुरु आचार को देवता समझें। इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है। यत यत कर्म करो मैं तत् तद अखिलम शंभु तबाराध, और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही थी हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन्य क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे, वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था, ये सनातन धर्म है, अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अतिथि देव भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा सेठ की पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा। जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया सेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे। उन्होंने पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपये की रसीद किस बात की काटते हो? क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा, महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसी धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही, वही विद्युत है। जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी, सुधाया पानम अमितत्व सहेतु हो, सुधा का पान ही अमितत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतः का निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
4: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
9: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karma Shaka, Adhyayam 31.
10: Atha एकत्रिंशोऽध्यायः। ओम

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः विश्वरूपक् स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः गणकर्ता गण

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हरवोम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय.
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Anaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनार या संत की कहानी, जिनका नाम है अनायार। दक्षिण के तिरुचिरापल्ली के उत्तर का क्षेत्र प्राचीन काल में मलनाड कहता था। यहाँ अहिरों का एक परिवार रहता था जो गौ पालन का कार्य करते थे। अहिर वंश प्राय कृष्ण परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं, पर यह परिवार पशुपतिनाथ शिव के प्रति समर्पित था। इस परिवार में अनायार का जन्म हुआ। अनायार की रुचि वंशीवादन और शिव भक्ति में थी। उनकी बंसी सुनकर सभी को प्रसन्न होता था। गायें चराने के लिए जब अनायार चारागाहों में पहुंचते तो प्रतिदिन अपनी बंसी द्वारा शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र की धुन निकालता। उसने संगीत के सप्त स्वरों में नमः शिवाय को ऐसा साधा कि वह अपनी भी शुभ भूल गया। इस अलौकिक मंत्र को जब वह भक्ति में लीन होकर बंसी के स्वर से निकालता था तो सर्वत्र संगीत रूपी अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती। वंशी की स्वर माधुरी जड़ चेतन प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती। पशु पक्षी मानव सभी हृदय तंत्री मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें घास चरना बोलकर अनायार के समीप आकर खड़ी हो जाती थी। बछड़े माँ के धन से दूध पीना भूलकर खींचे चले आते। उस बंसी में निकले ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से पक्षी जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं उसी स्थान पर चक्कर लगाते रहते थे। हिरण समूह कुलांचे भरना भूल कर बंसी के स्वरों में स्वयं को विस्मृत कर देते। मयूर समूह नृत्य छोड़कर शांतिचित होकर उस संगीत का पान करते। सांप शेर अथवा सभी जीव पारस्परिक शत्रुता भूलकर मुरली माधुरी में विमुक्त होकर एक साथ बैठे रहते। आयना की इस एकनिष्ठ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव उनके समीक्ष आ गए और उनसे कहा, बस इसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने अनायार को रुद्र पशुपतियार नाम प्रदान किया, तो उनका दूसरा नाम रुद्र पशुपतियार हुआ। चित्तिलर ने कहा है कि जिस प्रकार बंसीवादन का विषय एवं सूक्ष्म वर्ग सभी को प्रसन्न कर देता था, उसी तरह विष्णु भक्त कैयालवार ने कृष्ण कन्हैया को की मुरलीवादन का वर्णन किया है। कालांतर में सूरदास ने ऐसा वर्णन उत्तरी भारत हिंदी भाषा में भी की है। ये सभी भक्त एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि पशु पक्षी से लेकर मानव तक सभी को एक समान बांधने की क्षमता केवल संगीत में है, और जो संगीत शिव या भगवान के प्रति समर्पित हो वह सारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। संगीत एक ऐसा सशक्त साधन है जो ऐसी समझता ला सकता है। एक कोशीय जीव से लेकर सुविकसित मानव तक सभी में जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है उसी के आधार पर संसार टिकाऊ हुआ है। अनायार जैसे भक्त अथवा शिव श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार बंसी की स्वर लहरियां वायुमंडल में दसों दिशाओं में फैलाते हैं तो जीव मात्र में व्याप्त एकात्मकता को उद्घाटित कर उनमें एक सामरस्य स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो देवलोक में व्याप्त सभी देवगण अपना अपना आविर्भाव या प्रसाद ग्रहण करना भूलकर गोकुल में कृष्ण की मुरली के रस का पान करने पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ अनायार के वंशीवादन में थी, इसलिए यह है उच्च कोटि के संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो। the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: ये संकेत वहां भी ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत कर रहे हैं, जो विस्पष्टार प्रची नाम उनके लिए, तो जीवन में क्या होना चाहिए, तो पहले श्रवण, श्रवण के द्वारा उसके गुणधर्मों का विवेक, गुणधर्मों का विवेक होने पर हमारी इच्छा उसमें होती है, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न करना, और प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे वो पात्रता, वो अधिकारिता हमारे में आ जाती है, वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि प्रयत्न करते हुए तुम अधिकारी बन ही जाओ। कितने लोग जीवन में और अध्ययन करते हैं लेकिन सब जो है कंपटीशन में जाते हैं तो क्या सब अधिकारी बन जाते और सबका चयन हो जाता? यही तो शास्त्र कहता बार बार, धर्मशील कोटि न मोह कोऊ एक एक हो धर्म सूत्रधारी। माने करोड़ों व्यक्तियों में, अनंत व्यक्तियों में कोई विरले ही है धर्म और श्रुति के अनुकूल चलने वाले, और उन चलने वालों में भी उस प्रकार से कर्म करने वाले, प्रयत्न करने वाले, उनमें भी बहुत कम, उनमें भी छटनी हो जाती, और कहने लगे उससे आगे श्रेणी चलती है, तो ऐसे प्रयत्न करने वालों में कोई एक ही सिद्धि को मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे, इस सिद्धि के लिए कोई एक निकलता, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्य तत्तथा, कोई एक ही प्राप्त होता है। तो ये जीवन की और सर्वत्र, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ये नियम सर्वत्र विद्यमान, ये संकेत। इसलिए यहां कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, और प्रयास की श्रेणी बतलाई तो श्रद्धा कब आएगी और श्रद्धा भी कैसी, इसको लेके हम दृष्टांत एक दे रहे थे। क्या अवंतिका का राजा, इन दृष्टांतों से सरल में समझ में आ जाती। अवंतिका का राजा शिकार खेलने के लिए मेदपाट के आसपास जंगल में गया और भील को वहां सहयोगी बना लिया। भील ने उसकी सेवा की, एक महीने तक रहा, और भील ने जब जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ उसका सहयोग किया तो उस पर प्रसन्न हो गया। तो उसने क्या कहा, जब चलने लगा प्रसन्न हो गया कि भाई तू हमसे कुछ मांग ले। अब जो है जब उससे कहा तो उसने क्या देखा था कि वो जो है प्रातः काल बैठा हुआ और क्या कर रहा था, भगवान शिव की पूजा, और वो ही नहीं कर रहा था, करते तो सब है लेकिन करते हुए भी और जो है भूल जाते हैं, ये भूल ही तो सब काम खराब कर देती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि इसको न करता हो। आप कहो कैसे, तो आपको एक मोटे रूप में बतलाऊं, आप पालती मार के बैठ जाओ है? अब आपके जंघाओं का जो पालती का रूप बन गया, ये क्या हो गया, मान लो एक मंदिर का चबूतरा हो गया, क्या हो गया, मंदिर का चबूतरा हो गया। ये जो आपका है वो मंदिर का पूरा जो है परकोटा बन गया, हृदय आपका गर्भगृह हो गया, और ये उसका गुम्बद हो गया, और जटाएं हो भावा जी जैसी तो बांध लो, जूरा तो कंगूरा हो गया है ना, कंगूरा उसका बन गया। अच्छा, अब जो है वो जो इस गर्भगृह के अंदर जो बैठा है वही क्या है, शिव विग्रह, वो आत्मा जो विद्यमान है वही क्या है, शिव विग्रह। और बंद करके, चारों तरफ से बंद करके प्रत्येक प्राणी सुसुप्ति अवस्था में कहां जाता, वहीं जाता है, उसी की पूजा करता, उसको जो है वो कोई जान ही नहीं पाता, वो भी नहीं जान पाता, और उसने जो है धीरे से, उसकी जब रुचि पैदा हुई और रुचि पैदा हुई तो सीमन थोड़ी हटाई और देखा कि यह जो है इसकी उपासना करता है, तो उपासना करता तो लोक से भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो। अब जब उसने देखा तो उसके हृदय में भी रुचि पैदा हो गई। रुचि ही तो पैदा हुई पहले, और कैसे हुई तो देख करके सुन करके। जीवन में जो है हम अनुभव करते यही देखना, और जब उसके अंदर रुचि हुई तो रुचि के अनुसार उसके अंदर भी आया कि मैं जो हूं भी पूजा आदि करूं। अब ये क्या है? था तो भीड़, तो ये कोई नियम नहीं। प्राणी, कोई भी प्राणी कहां है कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। कब परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है और कब उसके हृदय में वो इच्छा पैदा हो जाती है, ये कोई नियम नहीं। ये नहीं कि बाबा जी के हृदय में ही पैदा होगी, गुफा में बैठे हुए एकांत में बैठे उनके ही हृदय में पैदा होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। वो नियम है एक बुद्धि की शुद्धि करने का नियम, अपहरे गिरी नाम संगमे नदी नाम विप्रो धिया अजायत। वो एक जो है हमारी विप्र बुद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन बुद्धि प्राप्त होने पर कोई ऐसा नियम नहीं कि एक व्हील है जो व्यवहार में लोक व्यवहार में चल रहा है और उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर भी हो सकता। परमात्मा की कब किस पर कृपा हो जाती है तो तभी उसके हृदय में उसकी बुद्धि में वो दृष्टि पैदा हो जाती, वो रुचि पैदा हो जाती, और व्हील के भी रुचि पैदा हो गई। और वो राजा जाने लगा, राजा कोई दूसरा नहीं जीव ही समझ लेना। अब जब राजा जाने लगा और पंच विषयों का उपभोग करना यही शिकार करना है, और कोई शिकार करना नहीं, लेकिन किसके सहयोग से करते हो तो बुद्धि आदि के सहयोग से ही करते हो, वगैरह उसके नहीं कर सकोगे। तो ये सब सारे रूपक इसीलिए बनाए गए। तो अब जो है उस व्हील से कहा कि तू कुछ मांग ले। उसने कहा मुझे तो जो है ये विग्रह दे दो। उसने थोड़ा टालना भी चाह, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और जो है उसकी रुचि जो पक्की हो गई, और जब रुचि पक्की हो गई तो राजा ने कहा चलो ठीक, इसने सेवा की है, ये उसकी प्रसन्नता थी। अब जो है प्रसाद से प्रसन्नता से उसने उसको दे दिया, उसने उसका नियम पूछा। राजा ने सोचा ये भील जाति का है, ये नियम को निर्वाह कर सकेगा, पवित्रता रख सकेगा या नहीं रख सकेगा, इसलिए उसने सामान्यतया उसकी विधि बतला दी। जल पुष्प पत्र आदि चढ़ा देना, ये तो जंगल में मिल ही जाते, लेकिन एक नियम बतला दिया। एक न कोई जीवन में एक हमारा निश्चय होना चाहिए, नियम होना चाहिए जिस पर हम आरूढ़ रहे, और वही नियम हमको जो है गति तक पहुंचा देता। और ऐसा ही जब जो है उससे कहा कि एक नियम रखना, कहा क्या? कहा ये जो शिव है इसे प्रिय क्या है? जल भी प्रिय, ये सब तो प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय क्या है? जिसका ही उसने आवरण बना लिया है, चिता भस्म लेप सृगप रोटी परिकर है, मने जो है अपने सारे शरीर में जिसने क्या लगा रखा, कहा भस्म। और ये भस्म किसका प्रतीक है? भस्म प्रतीक है सारी उपाधियों को नष्ट करके जो शेष तया मूल तत्व है उसका। भई जो उपाधि थी, जो नाम रूप था, और वह जल गया, लकड़ी, लकड़ी क्या एक नाम है और उसका आकार प्रकार, उसे जला दिया तो क्या रह गया? राख रह गई, भस्म रह गई। अब लकड़ी नहीं कहोगे उसे, है ना, तो वो क्या है? राख। इसी प्रकार से सारे जगत की उपाधि जो नाम रूपात्मक है, उसको जहां पर जला दिया जाता है, उसका जहां पर परित्याग कर दिया जाता है, और वह शेष जो बचता है उसका नाम है भस्म। और ऐसे शेष को धारण करने वाले कौन है? शिव, परात्पर ब्रह्म। तो अवशिष्टया जो रहने वाला है, इसलिए उसे कहा जाता संगो ही अयम पुरुष। किसी भी उपाधि में उसकी आसक्ति नहीं, निरुपाधिक जो है, तो इसलिए शिव को जो है निर्गुण निराकार मानते। राम की मूर्ति होगी, सगुण साकार कहोगे, लेकिन जो है शिव विग्रह को निर्गुण निराकार की उपासना माना, संकेत किया। इसलिए उपासनाओं में भी थोड़ी चर्चा आ गई, कह दो प्रकार की उपासनाएं होती, ये तो सब जानते, एक अहंग्रह उपासना और एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना क्या है? आलम्बन प्रधानत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति प्रतीकोपासनम। प्रतीक उपासना क्या? गंडकी नदी से आप जो है गोलमोल प्रस्तर लेके आए, लेकिन उसको सिंहासन बना करके रखा, और क्या कहते हो, सालिग्राम भगवान। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहते, भोग भी लगाते सब करते हो। तो आपने उसका आश्रय लिया, एक सहारा बनाया और आलंबन बनाया उसे, और उसका आलंबन बना करके अब वहां पर वृत्ति क्या बन रही है, भाव क्या बना रहे, चिंतन क्या कर रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो ये सालिग्राम है। और कौन से सालिग्राम है, का सृष्टि करने वाले, स्थिति करने वाले, लय करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसे ये सालिग्राम भगवान हैं, ऐसा चिंतन करते, ठीक है ना। ये तो हो गई प्रतीक उपासना, हमने एक सारा ले लिया, एक अवलंबन ले लिया, क्योंकि बगैर अवलंबन के चलना हमारे लिए कठिन है, बारहवें अध्याय में पढ़ते ही हो। तब ये तो हो गई प्रतीक उपासना, कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह, कोई भी सहारा ले लेना। आगे कहा अहंगर उपासना, अहंगर उपासना में क्या रह जाता, आलंबन त्रिस्कृत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति अहंग्रोपासनम। वहां पर आलंबन अपने आप छूट जाता है, छोड़ता है ऐसा नहीं, आलंबन क्या होता का छूट जाता है। और आलंबन जब छूट जाता है, लेकिन उत्कृष्ट चिंतन छूटता नहीं, उस उत्कृष्टता का उसे बोध रहता है कि ये सारा जगत कहां से हुआ है। तो कहने लगे जिस कारण से, ये तो हुआ है मान भूतान जायंती, तो उसी से हुआ है, वही एक मूल तत्व है, वही एक मूल शक्ति है, और वही मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा चिंतन वो करता है, वही मैं हूं। और ये चिंतन करना ही क्या है, अहंग्रह उपासना। और अब किसकी चर्चा कर देंगे, थोड़ी सी इसको सुन लो दृष्टांत को। अब जब जो है उसने उसको दे दिया, तो नियम बतला दिया कि भस्म जो है जरूर चढ़ा देना। किसकी भस्म चढ़ाना, ध्यान रखना, चिता भस्म। और चिता भस्म का मतलब जानते हो, जहां पर नाम रूप उपाधि को हटा करके जो शेष बचे उसी का नाम है चिता भस्म। नाम भी नहीं रहा, रूप भी नहीं रहा, क्या रह गया, केवल जो अवशेष तया जो सत्तात्मक है वो रह गया, उसको चढ़ा देना। उसमें भी आसक्ति मत रखना, माने उसका त्याग कर देना। चढ़ा देने का मतलब क्या, त्याग कर, ध्यान रखो। अब जब इस प्रकार से जब कहा उससे, तो उसने जो है 12 वर्ष तक इस नियम को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। और जब वर्षा हो गई, चारों तरफ जल हो गया, चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बेचारा दुखी होने लगा कि एक छोटे से नियम को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आप तो मैं शरीर का ही त्याग कर दूंगा, धिक्कार है मेरे लिए। और जब ऐसे कहने लगा, तो उसकी जो धर्म पत्नी थी आहुकी, जो उसका सहयोग करने वाली थी, यासी को वृत्ति कह दो, तो उसने जो है जब उससे कहा, तो उसने जब अपनी वेदना व्यक्त की, तो उसने कहा चिंता करने की बात क्या, कहा क्या मतलब, कहा झोपड़ी है ना, कहा तो, कहा इसमें आग लगा दूंगी, अंदर सूखी है, और मैं बैठ जाऊंगी, जल जाऊंगी, चिता भस्म। कहा तू, कहा जब ये नाम रूप उपाधि जो है सब मिथ्या ही है, और इसका जाना निश्चित ही है, और ये यदि जो है जो वस्तु हमसे छूटने वाली है, तो क्यों न इसको देकर के भगवान को हम दाता बन जाए, ये बढ़िया श्रेय हमें मिलेगा। और ये भाव तो उसने कहा तू ठीक कह दी, और वो उसमें बैठ गई और बैठ करके आग लगा दी। और आग लगा करके चिंतन क्या कर रही, जैसे ही उसमें बैठी, आग जलने लगी, जहां तक उसे बोध है, और कहने लगी

0: विचार उसका क्या है, क्या विचार करने लगी। पुष्पाणि संत पुष्प हैं और उन पुष्पों को मैं तुम्हारे लिए अर्पण, लेकिन पुष्प क्या है तो क्या कहने लगी। पुष्पाणि संत तव देव, हे देव हे भगवान, आज मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, लेकिन पूजा किससे कर रही हूं, अब वन्य पुष्पों से नहीं, वनस्पति औषधियों पर होने वाले पुष्पों से नहीं। कहा ये तो तुम्हारे द्वारा ये निर्मित हैं, हमारे द्वारा निर्मित पुष्पों से नहीं, क्या है का? कहा पुष्पाणि संत तव देव ममेन्द्रियाणि, हमारी आंख नासिका आदि कान ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं को मैं पुष्पों की जगह पर आपको अर्पित कर रही। और कहने लगे इतना ही नहीं, आगे कहा धूपो अगर बपुरिदम, और धूप बत्ती की जगह पर ये शरीर ही मैं आपको धूप की बत्ती की जगह पर आपको अर्पित कर रही। धूपो अगर बपुरिदम हृदयम प्रदीपा है दीपम दर्शयामी, और दीपक की जगह पर मैं अपने हृदय को ही आपको अर्पित कर रही। प्राण हवीस हव्य की जगह पर, आहुति की जगह पर हम अपने प्राणों की ही आहुति आपको, हम लोग भी कहते हैं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा, लेकिन वो कहना ही कहना है। ये दृष्टि आ जाए, अब संकेत किया और कहने लगे आगे प्राणा हवीस, अंत में चाहते हो अक्षतान समर्पयामि है क्या, तो चावल जो है वो क्या है, कर्णानि तवाक्षतास्त, हमारे पैर हमारे हाथ जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो हम तुम्हें अक्षत की जगह पर समर्पित कर रही हूं। और आगे कह दिया पूजा फलम व्रजत साम्प्रतमेश जीवा, यह जीव जो हमारे में जीव भाव है यह इस पूजा के फल को प्राप्त हो और आपके चरणों को प्राप्त करे। ये संकेत कहते हुए उसने दिला दिया, भस्म तैयार हो गई, वह निर्विकार भाव से वह आहुक जो है पूजा करने बैठ गया। और जब पूजा करने बैठ गया तो उसके जीवन में तत्परता थी। हम कहते तो हैं संयत इंद्रिया तत्पर, उसके जीवन में वो संलग्नता थी, पूजा करने में इतना संलग्न हो गया, इतने मन से करता था, इधर उधर उसका चिंतन नहीं होता था। और जब वो पूजा करने बैठ गया, क्रम से सारी वस्तुओं को अर्पित कर दिया, और जब पूजा में संलग्न हो गया तो उसकी वृत्ति अन्य रह नहीं गई, तो जैसे स्वभाव उसका बन गया था, रोजाना कहता था भोग का समय आया कि अरे भोग तो ले आओ, और जैसे आवाज सुनी तो वह जो है दिव्य जो है रूप में आकर के दिव्य भोग को लेकर के उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा तो होश आया, और जैसे ही उसे होश आया कहा तू तो जल गई थी। कहा हां आपने आवाज लगाई, मैं तो जल गई थी, बैठी तो मुझे कुछ पता नहीं, बैठी उस समय पता चला, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं चला, लेकिन आपने आवाज लगाई तो भोग तैयार रखा था और वो मैं लेके। कहने लगा धन्य है आप छिप करके ये सारा काम कर रहे हो, कृपा करो अब आप जो है, और भगवान ने उसे दर्शन दिया। ये साक्षात्कार हुआ, तो ये साक्षात्कार कब हुआ, ये साक्षात्कार हुआ तब जब हमने अपने अंतःकरण को अपनी इंद्रियों को और उसके समर्पित कर दिया। ये सब भगवान बार बार कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तो कर्ता भोक्ता बने हुए है ना, ये साक्षात्कार की स्थिति होती तो विस्पष्ट रुचि नाम, जो साक्षात्कार करना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका संप्रणयन कर रहे हैं। अब आपको एक बात और सुना दूं, अभी जो हम प्रतीक उपासना की बात करते पहले हम प्रतीक से चलते हैं और प्रतीक से अहंग्रह में पहुंच रुचि होती है, रुचि श्रद्धा में ले जाती है और श्रद्धा में सत्य का साक्षात्कार करा देती है, चाहे वो कैवल्य उपनिषद हो चाहे कोई उपनिषद हो और चाहे सामान्य शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने प्रेरित किए वो हो। आप मीरा की कथा सुनते हो, मीरा की जीवनचर्या भी आप जानते हो, कहानी सब जानते हो, उसके पदों को भी गाते हो। मीरा ने पहले क्या है बचपन में ही है किसी आचार्य से कृष्ण की मूर्ति देखी और जो है उसमें प्रेम हो गया, उसकी आराधना करने लगी और आगे चल करके और उसी का श्रवण होने लगा, तो विशेष रुचि हो गई, और विशेष जब रुचि हो गई तो रुचि कितनी हो गई, विशेष इतनी हो गई कि उसी में ही मीरा निहित हो गई और क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। अब जाकर छोड़ दई कुल की कान कहा करे है मेरो कोई, ये मीरा की भावना, जो मीरा जीवन भर कहती रही कि मोर मुकुट वाला मेरा पति है ना, जीवन भर क्या कहा कि मोर मुकुट वाला मेरा, तुलसीदास की भी किंवदंती आती। लेकिन आप विचार करो, अब गीता में बोलते हो अव्यविचारी भक्ति है, अब मीरा की भक्ति कैसी है, अब आप कहते तो हो लेकिन कैसे, आगे पद मीरा क्या बोलती, जीवन भर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ये मित्र है या मेरा ये पति है, और जब प्राप्त होने का समय आ जाए तो नाम बदल दे, कहे कि देवदत्त मेरा पति है, और जब प्राप्त होने पति से मिलने का समय आ जाए तो कह दे कि नहीं नहीं धर्मदत्त मेरा पति है, तो उसे क्या कहोगे, विश्वास करोगे। जीवन भर जिसने कहा कि मोर मुकुट है वाला मेरा पति, और जब पति प्राप्त हुआ मिला साक्षात्कार हुआ तो क्या कहा, पायो जी पायो मैंने, क्या मतलब, विचार करने की बात, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो कहना चाहिए श्याम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। कोई किसान कहे कि मैंने चना बोया था और काटने पहुंचे तो गेहूं मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन क्या है, पहले थी भागो भक्ति प्रतीक भक्ति, लेकिन अब मीरा कहां पहुंची, और मीरा कौन है, जब मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा तो तुलसीदास ने क्या लिखा था, तजोरे मन हरे विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग तजोरे मन, और मीरा ने वो मान करके छोड़ दिया है, और पहुंच गई वृंदावन, हो गई वैरागी एक संकेत मात्र से, लेकिन वो तुलसीदास तो पीछे रह गए, और मीरा उनसे है? गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चक्कर हो गया। मीरा ने जो है क्या स्थिति प्राप्त की, तो यही नहीं कहा राम रतन धन पाने का मतलब क्या, मीरा के जीवन में राम और कृष्ण का भेद ही मिट गया, ये राम है ये कृष्ण ये नहीं, कैसे कहोगे, तो जो श्रुति का निचोड़ है सार है उसको मीरा आगे कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन ये राम रतन धन क्या है, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, ये वस्तु सामान्य वस्तु नहीं, वस्तु शब्द का प्रयोग किया, अमूल्य है जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, जो अनंत है जिसे ब्रह्म को अनंत कहा जाता, ऐसे ही अनंत से निप्त, और इतना ही नहीं कहा, जो श्रुति में अप्रमेय है अव्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया, मीरा ने सामान्य शब्दों में उनको कहकर बतला दिया, कहा यह वस्तु कैसी है, खर्च न होवे, क्या मतलब, मनुष्य में व्यय कभी हो ही नहीं सकता, परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, न्यूनता कभी आई नहीं, खर्च न होवे और चोर न लेवे, चोर क्या करेगा, एक देश से दूसरे देश में ही तो ले जाएगा, तो देशगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं है और वस्तुगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं, खर्च न होवे चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने, और ये तो कहते हो भृंगत्वात् भृंगत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, ऐसी स्थिति में मीरा पहुंच जाती। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर संकेत किया कि हमारे जीवन में जब आचार्य आदि का के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, शास्त्रों का हम आश्रय लेते हैं, और शास्त्रों का आश्रय लेकर के और आचार्य आदि के द्वारा हम जब उन व्यक्तियों को श्रवण करते हैं तो हमारे में रुचि होती है, और रुचि जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं तो जीवन में वैराग्य आदि आता है, मोक्षता आदि आती है, और ये सब आते हुए हमें वह श्रद्धा से युक्त करके अधिकारी बना देती है, और अधिकारी बनने पर हमें उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा जो सार तत्व है वो इस उपनिषद के अंतर्गत है, और वो हम जो है संप्रणयन करने जा रहे हैं, ये यहां चर्चा है, अब फिर कभी होगा भगवान की कृपा। ओम शांति
1: नारायण नारायण नारायण। सही माने में हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संत स्वामी प्रेमपुर जी की कृपा से यहां पधारते हैं, अद्भुत वाणी ज्ञान बरस रहा है यहां पर, श्रवण करते रहें यह इच्छा होती रहती है, स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों के दर्शन, इनकी वाणी, इनका ज्ञान हमें यहां प्रसाद के रूप में मिल रहा है। स्वामी जी ने बताया हमें कि सोने के पात्र में चंदन की लकड़ी जलाकर यदि हम उसमें लहसुन पैदा करते हैं तो हमारे समान मूर्ख और कौन होगा। और सही माने में हम वही कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना दुर्लभ दे दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, अमूल्य सांसें दी हैं, अमूल्य समय दिया है। मरते वक्त हम करोड़ों रुपए खर्च कर भी एक सांस नहीं पा सकते, उन सांसों को, उन समय को, इस दुर्लभ मनुष्य देह को हम किन बातों में बर्बाद कर रहे हैं? असत पदार्थों के जमा करने में, असत भोगों के, नाशवान भोगों के भोगने में हम अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उस प्राणी में जो सोने के बर्तन में चंदन की लकड़ी जलाकर लहसुन का साग बना रहा है, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी की वो समस्या है कि मुझे बाहर से आ रही है और वाकई में कस्तूरी उसके भीतर है। वही हालत हमारी है, आनंद हमारे भीतर है और आनंद हम बाहर संसार में सोचते हैं, ढूंढते हैं, और संसार में आनंद है नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बातें स्वामी जी ने हमें कही हैं उनको हमें आचरण में लाना है। हमें हमारे जीवन में जो असत वस्तुएं हैं उनका त्याग करके सत्य क्या है, केवल ईश्वर सार एक ही है, वासुदेव है सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। जो आनंद है, जो तत्व है, वो हमारे भीतर है। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की है, अगले वर्ष के लिए स्वामी जी ने समय दिया है, लेकिन अभी दिन और महीना अच्छी नहीं हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि जुलाई या अक्टूबर में स्वामी जी बधारेंगे, उसकी तिथि अभी नक्की हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्यग्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपरः सरञ्च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमतास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओ ओ ओ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। विचार के लिए, अभ्यास के लिए 12वां श्लोक। गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसत

पद स्थितं चेद्योगोऽसौ सच परमयोगी सच सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातु मुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभोस्त्वं दीनानां खलु परम बन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयो

गुहायां गेहेवा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी गुहायां गेहेवा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज भगवान शिव की भक्ति के बारे में, शिव भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय को भगवान शिव के साथ जोड़ लेता है, फिर संसार में उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल बताया था कि अपना हृदय परमात्मा में लगा दोगे तो परमात्मा खुद उसके योगक्षेम का भी वहन कर लेते हैं। गीता में भी भगवान यही कहते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी भी भगवान के बारे में यही कहते हैं कि हे शिवा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति अपने हृदय को आपके चरण कमल में लगाएगा उसके सारे योगक्षेम का आप अवश्य वहन करते हैं। भगवत भक्ति से विमुख होकर अन्य अन्य साधनों को अपनाने वालों के प्रति ये व्यंग करते हैं शंकराचार्य जी। जिस सहज साधना के द्वारा अपना प्रयोजन पूरा कर सकता है जीवात्मा, उस सहज साधना को तो करता नहीं और साधन के नाम पर, योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या करता है। तो शिव योग को छोड़कर अन्य योग के प्रति प्रवृत्त हुए हुए उन योगियों के प्रति यह व्यंग है। सबसे बड़ा योग है शिव योग। शिवयोग का अर्थ होता है कि अपने चित्त की वृत्ति शिव के प्रति जुड़ जाना, यही परम शिवयोग है। उसके बाद और कोई करते हो तो वो सब हठ योग है, क्रिया योग है, फिर पता नहीं कौन कौन से योग हैं, उन योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। कहीं सिर नीचे करेंगे, टांग ऊपर करेंगे, कहीं टांग ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई मुर्गा बनेंगे, कहीं कुकुड़ बनेंगे, कहीं सर्प बनेंगे। योग के नाम पर आसन हजार है, नहीं बहुत से आसन है, सर्पासन है, मंडुक आसन है। मंडुक माने डेढ़ को, गुजराती में डेढ़ को बोलते हो ना, हिंदी में मेंढक बोलते। मंडुक आसन करेंगे, अरे भाई तुम हजार बार मंडुक बन चुके हो, हजार बार सर्प बन चुके हो, अभी भी तुम्हारे मंडुक बनने की आकांक्षा पूरी नहीं हुई क्या है? योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या है। पेट ठीक रखने के लिए मयूर आसन करो, कहते हैं नहीं क्या है मयूर आसन? अब बढ़ोती में क्या करोगे मयूर आसन? मंडुक आसन किया है, मंडुक आसन करो, मयूर आसन करो, क्या क्या नाम रखा है। वृश्चिकासन करो, वज्रासन करो, ताड़ासन करो, शवासन करो। अरे कितनी बार शवासन किया है बोलो, हिसाब है तुमने कितनी बार शवासन की है? रोज भी करते हो शवासन, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर रामदेव कहेंगे तो शवासन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? शंकराचार्य जी की दूसरी दृष्टि है, तुम करो उस शरीर को ठीक करने के आसन है।
ध्यान देना, ये इनकी निंदा नहीं है, करो, शरीर को ठीक करने के आसन है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो शरीर ठीक होगा नहीं है। शरीर तो बड़ा वो अड़ियल घोड़े की तरह है, मारो चाबुक तो थोड़ी देर चले, चाबुक मारना छोड़ा तो खड़े हो गए, है अड़ियल घोड़ा है ये है। तब सबसे बढ़िया आसन बता रहे हैं, सबसे बढ़िया योग है शिव योग। वास अब शिव योग के बारे में यहां बता रहे हैं। शिव योग का अर्थ होता है मन को ठीक करना, तन को ठीक करना नहीं, ध्यान देना। शरीर पर जो ध्यान देगा, शरीर ठीक रहे ये ध्यान देगा, वो क्रिया योग करे, हठ योग करे, शीर्षासन करे, वीरासन करे, मयूरासन करे, मेंढकासन करे, मंडुकासन करे, कौन कौन से आसन है कर लो, सब हजार आसन कर लो।

से शिवयोग सिद्ध होगा। इसलिए यहां शिवयोग आंतरिक है, हठ योग बाह्य है, हठ योग क्रिया साध्य है, शिवयोग भाव साध्य है। शिवयोग भावना से सिद्ध होता है, क्रिया से कुछ नहीं। शिवयोग बुढ़ेती में भी कर सकते हो, रोगी हो तो भी कर सकते हो, भोगी हो तो भी कर सकते हो, लेकिन हठ योग रोगी में नहीं कर सकते। तुम रोगी हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे, बूढ़े हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे। लेकिन शास्त्र में अनेक प्रकार से हठ योग करने वालों का उल्लेख है, करते हैं, किया हुआ उल्लेख आता ही है। उनके तरफ व्यंग कर रहे हैं शंकराचार्य। कुछ लोग योग करने के लिए गुफा में चले जाते हैं, है ना, सुना है आप लोगों ने, घर बार छोड़ छाड़ कर पहाड़ में जंगल में जाकर गुफा और कंदराओं में बैठ जाते हैं, कंदमूल खाकर और योग साधना करते हैं। बहुत लोग करते हैं, आप लोगों ने भागवत के प्रसंग में सुनाई है। मांडव्य ऋषि है, मांडव्य ऋषि पहाड़ के कंदरा में गुफा में रहकर योग अभ्यास करके योग साधना में थे, और उसी समय में उस राज्य का जो राजा था उसके खजाने में चोरी हो गई, आप लोगों ने सुना है ना, और चोरों ने वो सारी राजकोष को चोरी करके ले जाकर उसी गुफा के अंदर रख दिया, जहां मांडव्य ऋषि पहले से ही समाधि में, निर्विकल्प समाधि में योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। तो राज आज्ञा हो गई कि चोरी हुई है, संपत्ति कहां रखा है, किसने चोरी की है, चोरों को पकड़ो, संपत्ति को खोजकर पता लगाओ, ले आओ। तो राजधानी में, शहरों में, गांव में, कस्बों में सब जगह खोजा गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब जंगलों में जब गए तो पहाड़ के एक गुफा के अंदर वो चोरी किया हुआ संपत्ति भी सुरक्षित वहीं रखा हुआ था, चोरों ने ले जाकर रख दिया वहां। उन्होंने विचार किया कि यहां कोई आएगा नहीं, यहीं रखते हैं, जब चाहेंगे हम लोग ले लेंगे। और वहीं हुआ मांडव्य ऋषि ध्यानमग्न होकर बैठे, उनको कुछ पता नहीं है। तब राजा के जो राजसेवक थे, आज की भाषा में आप लोग पुलिस कहते हो, है? तो उन्होंने देख लिया, कहा कि यही चोर है, ये पकड़े जाने के डर से ये आंख बंद करके बैठा है, पाखंडी कर रहा है, ये यदि चोर नहीं होता तो ये संपत्ति यहां कैसे आ गई। चोर होगा या चोर का भी सरदार होगा यही। तो राजा को संदेश भेजा गया कि आपका संपत्ति राजकोष जो संपत्ति था वो भी पता चल गया और चोर भी पता चल गया। राजा ने विचार किए बिना ही कह दिया, उसको सूली में चढ़ा दो। देखो जी, चोर को तो सूली में चढ़ा दो और जब वो मर जाए, खत्म हो जाए, तो संपत्ति लेकर आ जाओ। उन्होंने चढ़ा दी सूली में, लेकिन सूली में चढ़ाने पर भी मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तो उन लोगों का आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या बात है, मरा नहीं है, तो ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साधारण व्यक्ति होता तो मर जाता, ये कोई असाधारण पुरुष है, वास्तव में ये कोई योगी पहुंचा हुआ योगी था, और हमने भ्रांति से ये चोर कह दिया और राजा आज्ञा हो गई, हमने सूली में लगा दी, उसको उतारा। राजा को संदेश भेजा गया, भाई वो तो मरा नहीं, सूली में चढ़ाने पर भी नहीं मरा। राजा डर गया, कहीं वास्तव में चोर के संदेह में किसी महान योगी को सूली में तो नहीं चढ़ाया गया, खुद जाना चाहिए। राजा खुद आकर देखता है।

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Periya Puranam Discourse in Kannada. The title is Gananatha Nayanar Puranam, presented by Sri H.S. Thyagarajan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Gurubhyo Namaha. Ella Mahaniyarigalgu Namaskara. Gananatha Nayanar Avara Charitraye Nunta Nodana. Gananatha Nayanar Avar Bagge நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவரு கடற்காழி கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன். கடற்காழி அந்தந்தரே ஷீர்காழி அந்த அர்த்த. ஈ ஊரினல்லிதவரு ஷீர்காழியினல்லிதவரு ஏனு பால ஒள்ளேவரு சிவபக்தரு, அது ஹேளலேபேகாயில்ல சிவபக்தர் அந்தரே பால சிவபக்தரே. இவரிகே ஜனகளன்னு சேர்ஸ்பேகு, ஈ சிவபக்தியல்லே ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶಿವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರಂತಂದರೆ, ತಿರುಮುರೈಗಳನ್ನು ಬರೆಸೋದು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೀರಿ, ನೀವು ಬರೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಹೀಗೆ ತಿರುಮುರೈಗಳಿಂದ ಬರೆಸೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹಾಡೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಡ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ, ಹಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸ. ಹೂಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೀಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಗುಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಒರೆಸುವುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು, ಈ ಥರ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೈವಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಗೊಂಡು ನಾವು ಧನ್ಯರಾದವು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಾವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಗಣನಾಥ ನಾಯನಾರ್ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
0: ಅಪಾನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya.
1: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तो पेट पहले भर गया फिर खाओगे क्या? खाने की जरूरत क्या है? दिया जलाओगे अंधकार को मिटाने के लिए? जो अंधकार ही मिट गया पहले तो दिया के श्रोतव्यम आत्मा का क्या लक्षण है? हर एक वस्तु का लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि रहस्य थे। लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। अन्य बात लक्षण और प्रमाण तो श्रवण, हाँ वो तो पहले श्रवण करना ही पड़ेगा ना, साधन तो है ना, कहना पर भी तो शब्द ज्ञान है कि नहीं? शब्द ज्ञान के द्वारा ही तो आपको मालूम पड़ेगा ये वस्तु ऐसी है, परंतु सुनने मात्र से नहीं होता है ना, फिर जानना पड़ता है ना। क्यों? आत्मा सिद्ध वस्तु है, आत्मा सिद्ध वस्तु, साधन सिद्ध नहीं है, याद रखना आप, साधन सिद्ध नहीं है। जो वस्तु साधन सिद्ध होता है ना, उसके लिए आप आपकी बात है। हाँ हाँ, प्राणायाम करते रहो, अंतकरण शुद्ध करते रहो। हमारे यहाँ उसका नहीं है, हमारे यहाँ श्रवण से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। वेदांत में श्रवण से अंतकरण शुद्ध होता है, इसीलिए भक्ति दर्शन में भी कहेगा, क्या कहेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शिक्षम आत्मा निवेदन। पहले श्रवण आता है, वेदांत वाक्य भी श्रवण आता है, सांख्य में भी श्रवण आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ भी पहले श्रवण आता है। ब्रह्म जिज्ञासा करने से पहले क्या करना चाहिए? यानी बस श्रवण प्रधान होता है वेदांत में, क्रिया है, क्रिया अभी अभी अभी वह ना क्या नाम हो, रामदेव, रामदेव तो लाखों को सिखाया है प्राणायाम करो, सबका चित्त शुद्ध हो गया। बोल, सबका चित्त शुद्ध हो गया, सबको सबका ईश्वर दर्शन हो गया, कब ज्ञान हो गया सबको? बोलो, प्राणायाम क्या किए? चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्राणायाम चित्त को स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए। हाँ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आने क्रिया योग है, सब ये सब क्रिया योग है। हाँ हाँ, बस इसमें लगा रखो। तो कल बोला था ना, कल बोला था आपको, क्रिया योग, भक्ति क्रिया योग है, उपासना क्रिया योग है, कर्म क्रिया योग है, ज्ञान योग है केवल द्वारा वेदांत वाक्य का श्रवण करते करते करते, श्रोतम श्रुति वाक्येभ्य। हाँ, श्रवण करो, किससे श्रवण करे? वेदांत वाक्यों का श्रवण करो। वेदांत क्या चीज है? तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण करो, श्रवण करने मात्र से तुमको जो बोध हो जाएगा। हानी बात, जीव और ब्रह्म की जो एकता के ज्ञान है ना, वो ज्ञान तुम्हारा अज्ञान का नाश करेगा। अज्ञान के नाश करने के लिए ना योग है, ना उपासना, ना भक्ति है, ना कलना है, कुछ भी नहीं है। क्यों? किसी शास्त्र ने नहीं कहा अज्ञान को नाश करने के लिए उमुक चाहिए। और आप कहोगे कि भगवान ने तो गीता में बतलाया कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश होता है, तो ये तो ठीक है, पर अज्ञान का नाश मैं करूंगा। तुम्हारे अंदर अज्ञान जो है, अज्ञान का नाश भगवान करेगा। हाँ, गीता में बतलाया कि नहीं? नहीं बतलाया। 18वां अध्याय में देखना, 9वां अध्याय में देखना। परंतु भगवान कब करेगा? जब 12वां अध्याय में बतला दिया भगवान ने, हाँ, सर्वाणि कर्माणि मय सिन्नेश मत पर अनन्य ने व जोगे न माम ध्यायन तो उपास होता, अनन्य जोग पूर्वक
4: मेरा ध्यान करता है। तेसा महाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवा विना श्रीराज पार्थ मैयाभिषित चेतसम। इसीलिए मैं बुद्धि निवेशय निवेशी मैं ऊर्धव न संशय। तो फिर आप कैसे पार करोगे? यदि ज्ञान से या आपके शरण में आने से ही मुक्ति हो जाए तो ज्ञान की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा मैं पहले तो बताया तेरे को ज्ञान न तदज्ञानम जैसा नाशितम आत्मा न हो। ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नाश हुआ उसको उद्धार करता हूँ। तो ज्ञान कैसे जथे ढंग से समिद्योग ने भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा अभिचेत से पावेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लबे नृजिनम संतरिष्यसी। तो बतलाया कि नहीं अवला तू पापे से पापी कहता है आपने को कौन नंबर का पापी है? कौन से नंबर का पापी है? एक नंबर का पापी है या नंबर पापियों पे भी नंबर लगता है याद रखना। हाँ पापियों भी नंबर होता है ना महाराज हम तो महापापी है बोलते नहीं पापा आत्मा हम पापा कर्मा हम पापा संभव हम बोलते कि नहीं। कर्म कांड में जो अंतिम में पंडित लोग कराते हैं कि नहीं पाप आत्मा हम पाप कर्मा हम पाप संभव हम बोलते हैं ना।

के लिए क्या है? हाँ, होता कि नहीं? बेड वर्स्ट बस, हाँ हो गया ना, तीसरा नंबर का है। हाँ, गुड बेटर बेस्टर हुआ अच्छा के लिए। पुण्य पुण्यात्मा पुण्य न पुण्यम कर्म नहीं थी, पापे न पापम लोकम नहीं थी। आनी बात तो तीन नंबर के जो पापी है, तीसरा नंबर का डरना नहीं, हमारे नौका में बैठ जा। कौन सा नौका? ज्ञान रूपी नौका। सर्वम ज्ञान प्लवे ने ब्रिजिनम संतरिष्यसि, ब्रिजिनम पापम तरिष्यसि, तर जाएगा कब? ज्ञान रूपी नौका में बैठेगा तो। सर्वम ज्ञान प्लवे ने ब्रिजिनम पापम संतरिष्य, सम्यक तर जाएगा। तो मतलब है भगवान कहते मैं ज्ञान रूपी नौका संसार में छोड़ा हूं, इस ज्ञान रूपी नौका में जो भी बैठ जाएगा वो पाप रूपी संसार रूपी, हाँ इसीलिए विवेक सुरामणि में है शंकर आचार्य लिखा है क्या पापी लोग जो है ना संसारी लोग प्रार्थना करते गुरु के पास जाकर, कथम तले यम भव सिंधु मेतम कावा गतिर्मय कथम अस्ति उपाय जाने न किंचित कृपया अब हम हो संसार सिंधु तरण अस्ति उपाय। हे गुरु जी बताओ कथम तरेयम भव सिंधु एतम एतम भव सिंधु, संसार को क्या बोलते हैं? सागर, संसार सागर, भव सागर, भव सिंधु, भव कानन, महाकानन, संसार कानन, इसका बहुत से नाम है। तो शिष्य कहते कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, हे गुरु जी ये संसार सागर को मैं कैसे पार जाऊं? जाने न किंचित, मुझे कुछ भी पता नहीं, ये संसार सागर से तैरने का रास्ता क्या है कुछ भी पता नहीं, कैसे मैं संसार सागर से पार जाऊं? जाने न किंचित कृपया अवमान भो, कृपा करके मेरी की रक्षा कीजिए। गुरु जी क्या होता है? मा भिष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय, आश्वासन देते निर्भय बना देते हैं गुरु जी, मत डर, भयभीत मत होना। मा भिष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सिंधु तरणे अस्ति उपाय, संसार सागर से पार करने के उपाय है, साधन है। जिने भी जाता है जतैष्य पारम, जति लोग जिस रास्ता से गया वो रास्ता मैं तेरे को बताऊंगा, तू भी पार चले जाएगा। देखा तो पार जाने का रास्ता क्या है? भव सिंधु पार करने का रास्ता क्या? संसार कानन को पार करने का क्या है? ज्ञान रूपिनु का। हाँ, कर्म भी साधन है, कर्म साधन है चित्त शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, योग है कर्म है ये सब अंतकरण की शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचार है ना, है ना? तत्व ज्ञान होगा विचार से, और कोई रास्ता नहीं है, याद रखना ना? तो वेदांत में श्रवण प्रधान है, श्रवण प्रधान वेदांत में सुनो सुनो। इसीलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धिपूर्वम कृतम पापम कृष्णम दहति बन्निवत। हाँ, विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ये जो ज्ञान की बात सुन सुनते हो रोज सुनते हो, ये ब्रह्म है कुटस्थ है साक्षी है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है तत्त्वमसि महावाक्य जो सुनते हो, इसका क्या फल है? ये परोक्ष ज्ञान अस्ति ब्रह्म इति परोक्ष ज्ञानम एतत्। ब्रह्म है ये जो हम लोग चिल्लाते हैं ना, इसका नाम परोक्ष ज्ञान तुम रोज सुनते हो। हाँ, अस्ति ब्रह्म इतिशित ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम ही बदत, ये परोक्ष ज्ञान। अब तुम किसी महापुरुष से सुना, अपने गुरु से सुना, किसी संतों से सुना, तो सुनने का फल क्या है? हाँ, ब्रह्म विज्ञानम बुद्धिपूर्वम कृतम पापम, जान बुझ करके तुमने जो पाप किया तमाम पापों को जला करके भस्म कर देगा, याद रखना। तो कहते हम इतना दिन सुनते पाप जलाता है कि नहीं जलाता, तुमको क्या मालूम जलाया कि नहीं जलाया?
अगर नहीं

जला तुम यहाँ नहीं आते, यहाँ आते हो इसीलिए जलाया है। आनी बात शब्द ज्ञान होते ना। हमारे एक नया दर्शनकार था बंगाल का, गदाधर भट्टाचार्य, अचिंत्य शब्द शक्ति ही, शब्द के अंदर शक्ति है कि वो तू शक्ति को विषय में तुम विचार नहीं कर सकते हो। हाँ, अचिंत्य है, इसका चिंतन का विषय नहीं है, शब्द के अंदर शक्ति है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, एटम बम है, एटम बम। हाँ हाँ, ये एटम बम है, भीतर जला कर जा करके अपने पापों को, दुष्ट कर्मों को, अनंत कर्मों को जला करके भस्म करता, समझे कि नहीं? ये वेदांत वाक्य सामान्य वाक्य नहीं समझना। हाँ, सुनने के लिए भी समझना, जन्मांतरीय पुण्य उदय हुआ हो तब सुनने को मिलता है। इसीलिए स्वामी जी कहते देखो शब्द के अंदर से शक्ति है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए प्रत्यक्ष सिद्ध है, यदि आपको स्तुति करे कोई तो आपको मन कैसा हो जाता है? कान के देखो, शब्द तो हमारे मुंह में है, आपके कान में पड़ा, कान से आपके भीतर गया, भीतर गए मन रूपी कमल को खिला दिया कि नहीं? यदि आपकी स्तुति किसने किया तो आपका चित्त कैसा हो जाता है? खिल जाता कि नहीं? तो यदि किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपकी गाली दी, हाँ, तो आपका चित्त कैसा हो जाएगा? गाली तो हमारे मुंह में है, निंदा हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों सिकुड़ गया, मुरझा गया? चित्त रूपी कमल, मन रूपी कमल क्यों मुरझा गया, ये बताओ। हाँ, क्यों? शब्द तो हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों बिगड़ गया? क्योंकि वो शब्द को आपने मान लिया कि मेरे लिए बोल रहा है। दस आदमी के बीच में एक आदमी का चित्त मुरझा गया, वो शब्द के साथ उसका संबंध हुआ। शब्द आकाश का गुण है, आकाश का गुण होने पर भी जो जिस शब्द के साथ संबंध बना रखा है ना, उसके शब्द को विक्षिप्त अथवा प्रफुल्लित करेगा, सबका नहीं करेगा। आनी बात, अब जब ये शब्द हमारे मुंह से निकाल करके आपके कान के द्वारा क्यों करना सस्कुली अवच्छिन्नम नभः, आकाश शब्द आकाश का गुण है, आकाश हुआ तुम्हारे कान के द्वारा, तुम्हारा हृदय आकाश में गया और तुम्हारे हृदय आकाश में जाकर तुम्हारे हृदय रूपी कमल को खिला दिया था, मुरझा कर दिया है, इसके मतलब क्या है? इस शब्द के अंदर शक्ति है। यदि आपका हृदय कमल मुरझा गया हो तो खुल गया, खिल गया हो कमल, तो कैसे मालूम पड़े? तो मुख कमल खिल जाएगा, हृदय कमल खिलने से मुख कमल खिल जाएगा, प्रसन्नता हो गई। तो तुम क्या करोगे? आपने बत्तीसी देखा होगा हमको, और हम भी आपने बत्तीसी आपको देखा, ही आई आई आई आई, सज्जन से सज्जन मिले तो क्या होगा? 10 से 10, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले खिल जाए 7 करोड़, 4 मिले 2 मित्र है तो ये दुआ किधर होगा? दुआ के बाद 4 हो गया, 4 मिले 64 खिले, 64 किधर आए? डॉक्टर के पास होगा। चार मिले 64 खिले, 20 रहे करज और हाथ जोड़ करके एक दूसरे के स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ करके एक दूसरे का स्वागत कर दे, सज्जन से सज्जन मिले खिले 64 करोड़, ये रोए रोए।
64 करोड़ हाँ खेल जाए 64 करोड़। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ क्या, एक शब्द से हुआ, और 64 किलो मुरझा जाए तो किससे, कोई शब्द से आने बात। तो शब्द के अंदर असिंत शक्ति है। ये वेदांत वाक्य जो श्रवण करते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यश जाता है, आगे ने चार सूत्र याद करा दिया था, याद है कि नहीं, याद नहीं है, नहीं वेदांत ब्रह्म सूत्र का जो चार सूत्र चतुर्सूत्र याद कराया था, और अपना हाँ शास्त्र नेत्व जन्माद्यश जाता है तत्व समझ नहीं याद, हाँ इतना भी याद नहीं है, तो इतना याद किया पर सब याद करा करके दिया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

ఆచార్య శంకర్ గురు చరణాంబుజ, గురు చరణ కమల్ కు ఆశ్రయ కర్కే నిర్భర్ హో జావ్. నిర్భర్ అగర్ ఆప్ గురు చరణ మే హోతే హై, గురుదేవ్ మే హోతే హై, తో ఆప్ నిర్భయ కు ప్రాప్త కర్ సక్తే. ఐసా తో కోయి వ్యక్తి హో జీవన్ మే జిన్కే పాస్ ఆప్ పూర్ణ రూప్ సే खुल सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, बता सकते हैं. हमारे जीवन में जो भी न्यूनता है उसको ऐसा कोई सत्ता हो, व्यक्ति हो, जिनके पास हम रख सकते हैं. और जिस दिन हम उस प्रकार से व्यक्तित्व को अर्पण कर सकते हैं जीवन को, तो वो जो गुरु है जिसको हमने चयन किया बनाया, उनके द्वारा ही इस जीवन के परम रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं. उस दिन शंकर जयंती के दिन वही विचार हम लोगों ने किया कि बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत विद्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है. अगर जीवन में बहुत आवश्यक और जरूरी है तो एक समर्पण. नारायण, कई बार लगता है कि शायद पढ़ करके जीवन में जो सरलता वो हमने गवा दी है, अध्ययन करके और डिग्रियों के द्वारा जो सरलता, ऋजुता, जो समर्पण की एक संभावना वो शायद हमने गवा दी है. और जिनके जीवन में वो नहीं है, डिग्री नहीं है, अध्ययन नहीं है, परंतु उनके जीवन में एक समर्पण है, एक त्याग है, एक अर्पण है, वो जीवन बड़ा मधुमय हो जाता है. जितने भी आचार्य हुए हमारे, चाहे तुकाराम, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, आनंदमयी मां, वर्तमान में आनंदमयी मां, रामकृष्ण, विवेकानंद, विवेकानंद जी को तो फिर भी पाश्चात्य ज्ञान थे, रामकृष्ण कौन से ज्ञान में, वो सेगांव के महाराज जी कौन से विद्वान थे, कौन सी डिग्री थी उनके, परंतु उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया. क्यों? क्योंकि किसी के पास वो खुद को अर्पण कर दिए. इसलिए भगवत भक्तजन, अध्ययन अध्यापन सब ठीक है, अगर जीवन में समर्पण हो तो. अगर समर्पण ही नहीं है तो जीवन, आप कितना भी डिग्री लेकर के चले, उस डिग्री के भार से आप बोझिल होते गए, परंतु जीवन में जो हल्का होना था, ताप रहित होना था, व्यथा रहित बनना था, वो नहीं बन पाए. इसलिए व्यक्ति जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व के पास अर्पण करे कि सारा ईगो, सारा अहम जो है एक तरफ रख करके उस गुरु के चरणों में खुद को सौंप दे, अर्पण कर दे. और जिस दिन इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं, उनके पूरा दायित्व जो है गुरु ले लेते हैं. इसलिए आचार्य शंकर बारंबार कह रहे हैं कि बस चाहे वो चांडाल क्यों ना हो, अगर उनके प्रज्ञा उस चैतन्य में है, दृढ़ प्रज्ञा वाला है, तो वो चांडाल क्यों ना हो, मेरे गुरु है. इसलिए भगवत भक्तजन टीकाकार लिखते हैं, गुरु की महिमा आचार्य शंकर के जीवन में एक अमौलिक तत्व है. अध्यात्म जीवन में गुरु की आवश्यकता है. गुरुम तम ददर्श, आनंद गिरी जी इस श्लोक के व्याख्यान में, टीका में लिखते हैं, गुरु ही वो तत्व को दिखला सकते हैं. इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता. ये जो उस दिन हमने बताया, मई एवं मना याधत्सो भगवान कृष्ण के वाणी को, तो ये हम भी चाहते कि हमारा मन और बुद्धि अर्पण हो, परंतु कैसे अर्पण हो ये कौन बतलाने वाला है? एकमात्र गुरु है जो अपने जीवन में जो भी त्रुटि है उसको दूर करते हुए उस परम तत्व को
अर्पण करने की विधि को सिखलाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अध्यात्म जीवन में गुरु की एक महिमा है। आचार्य शंकर के जीवन में भी जैसे वो गुरु के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार उनके जीवन में तोटक नाम के जो शिष्य हुए, तोटक आचार्य, उस दिन जो स्तुति हम लोगों ने सब मिलकर के पढ़ा, उनके जीवन में भी हमने वही देखा। कुछ भी नहीं है, परंतु गुरु कृपा के द्वारा वो शास्त्र के निर्यास को प्राप्त किया, और वो स्तुति के द्वारा, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो स्तुति के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब हमने गुरु बनाया किसी को, उस अस्तित्व के प्रति किसी भी प्रकार के संशय न रखो। कई बार ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार, उनके आचार देख करके लगता है कि कैसा लग रहा है, परंतु वो हम निर्णय नहीं कर सकते कि उनके आचार आचरण कैसा है। दुर्वासा मुनि को देखते हैं तो कितना क्रोधा आविष्ट है चित्त उनके, परंतु क्या वो सचमुच उस क्रोध से युक्त थे, अथवा किसी और के लिए क्रोध को एक अवलंबन बनाए रखे थे। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में कभी भी गुरु अगर किसी को अपने बनाया, तो उस गुरुदेव के प्रति मन में किसी भी प्रकार के संशय न रखे, गुरु के प्रदत्त मंत्र पर विश्वास करके नित्य निरंतर उस देव के आराधना करे। गुरु वो है जो आपके अतीन्द्रिय अस्तित्व से परिचय करा देते हैं, उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने का मार्ग बतला देते हैं, चलना आपको है। इसलिए कई बार हम सोचते गुरु कर लिए और न तो मंत्र की चैंटिंग की जरूरत है, न साधना की जरूरत है, न संशोधन की जरूरत है। भगवत भक्तजन, गुरु की आवश्यकता केवल मात्र उस तत्व से, उस चैतन्य से, उस भगवान से परिचय कराना, परंतु परिचय कराने के बाद उस भगवान तक पहुंचना तो आपको है। इसीलिए पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु को निर्णय देते हैं, निश्चय करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में ऐसा एक गुरु आवश्यक है जो हमारे प्रत्येक जीवन में आध्यात्मिक विकास करना जो चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। और जिस दिन हम गुरु को ग्रहण करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को अनुसरण करते हैं साधना के लिए, उस दिन से हमारा आध्यात्म जीवन का शुरुआत होता है। इसलिए जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता है। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उसी को कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी जोनी में क्यों ना हो, अगर चैतन्य प्रज्ञा ज्ञान वो है उनमें, तो वो हमारे गुरु है। अब गुरु कौन ज्ञान से युक्त है, श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम समित पाणिम, ये जो शास्त्र वचन है, इस पर आनंद गिरि जी कुछ प्रकाश देते हैं, कल उस पर विचार करेंगे।

0: कुतः वह्निरेव स्वाभाविकी नास्ति खलु, वह्निर्जन्यत्वात् वह्निर्शक्तिरपि जन्या भवति, यद्यपि सः स्वाभाविकी परन्तु जन्या भवति, कुतः वह्नेः जन्यत्वात्। अत्र तु परमात्मनः शक्तिः स्वाभाविकी परन्तु न जन्या, कुतः परमात्मनः अजन्यत्वात्, परमात्मनः अजत्वात् तच्छक्तिरपि अज। अग्रे ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकं ज्ञानं, स्वाभाविकं बलं, स्वाभाविकी क्रिया वर्तते, सर्वम् इच्छा ज्ञानं कृतिः सर्वं स्वाभाविकमस्ति
1: इत्यादि चिदचित् प्रपञ्चरूप शक्तिविशिष्टत्वं स्वाभाविकमेव ब्रह्मणः।
0: चिदचित् प्रपञ्चरूप शक्तिविशिष्टत्वं इन्द विशिष्टत्वं, तद्विशिष्टत्वमपि स्वाभाविकमेव ब्रह्मणः।
1: कदाचिदपि न निर्विशेषत्वम् इत्यनेन
0: अनेन किं सूचितम्? अद्वैतमतम् ओत्तु कृतिलै, निर्विशेषत्वं कदापि नेष्यते अस्माभिः इति सिद्धम्। चिदचित् प्रपञ्च विशिष्टत्वमेव परमात्मनः स्वरूपम् इति स्वीक्रियते।
1: अपरिच्छिन्न शक्ति विशिष्ट,
0: तत्र एकं क्षणं, चिदचित् प्रपञ्च रूप शक्ति प्रपञ्च अनुकूल शक्ति शक्तेः परिणामः इति कृत्वा परिणाम परिणामिनोः अभेदम् आलोच्य एवं व्यवहारः कृतः। चिदचित् प्रपञ्च एव शक्तिः इत्युक्ते तत् कथं भोः? प्रपञ्चः शक्तेः कार्यं खलु, अतः तर्हि प्रपञ्च अनुकूलशक्तिः इति लेखनीयमासीत् इति अस्माकं शङ्का भवति। सत्यं, परन्तु एवमपि लिखितुं शक्यते, परिणाम परिणामिनोः अभेदम् आलोच्य तथा लिखितम् इति मन्तव्यम्।
2: ब्रह्मणः या शक्तिः तस्याः
0: परिणामः सर्वोऽपि प्रपञ्चः इति अस्ति, अतः
1: सा शक्तिः चिदेव शक्तिः चित्
0: शक्तिः चिद्रूपा इत्यपि अस्ति, परन्तु तत्र अचिदात्मकत्वम् आदाय परिणामः वक्तव्यः, तद्विषये किञ्चित् शास्त्रविचारः अग्रे भविष्यति, कथं परिणामः इत्यादिकं न उपपादितम् एतावता, तत् पश्यामः अग्रे आगमिष्यति।
1: अपरिच्छिन्न शक्तिविशिष्टत्वम् अनन्तशक्तित्वम्,
0: अद् रण्डुं शेर्त चूर्णं पोल इर्क, अचिदंशोऽपि कश्चन अपेक्षते तत्र
1: माया
0: परिणामार्थं मायाया। अद्वैतरीत्या तु अस्माकं जडरूपा एव मायायाः सर्वथा चैतन्यं नेष्यते, मायायाः जडशक्तिरेव सा, परमात्मनः शक्तिः इत्युच्यते परन्तु जडात्मिका एव, आकरेषु सर्वं एल्लामे तेरियदु, अद् नम्मळे अद् अन्दन्द दर्शनत्तुक्कु एदु सरिया इरुक्कुमो अप्पडि अद् सेट्टिंग् पण्णनुम् अद् इन्द ललितासहस्रनाम स्तोत्रं पर चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर् जडात्मिका, रेण्डुमे सेर्त्तु पोट्टिरुक्क, சிச்சக்தின்னு இருக்கு ஜடசக்தின்னு இருக்கு, என்ன பண்றது? சிச்சக்தி சேதனா ரூபா ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா திரட்டம் எப்பசியாமா.
1: அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்துவம் அனந்த சக்தித்துவம்,
0: அத இப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபமாக வர்ணனம் பண்ணி உபாசனைக்காக அப்படி பண்றது, அது இருக்கட்டும், ஒரு தேவியாக வர்ணனம் பண்றது அதுன, வேற என்ன இதெல்லாம், அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு சக்தியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபேண பிரகல்பிய ஆராதனார்த்தம் வர்ணியதே ஸ்தோத்ரேஷு, அதா விவிதம் வர்ணனம் பவதி. அகே அகே படாம அத்ய சமாபனியம் இது.
1: அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்வம் அனந்த சக்தித்வம்,
0: அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்வம், அபரிச்சின்ன இயம் சக்தி, அதுக்கு பரிச்சேதம் கிடையாது, பரிச்சேதம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது ஒண்ணுமே கிடையாது, இதனாலையும் பரிச்சின்னம் இல்ல, அதான் அபரிச்சின்ன சக்தி விசிஷ்டத்வம் அனந்த சக்தி மற்றும் அனந்த சக்தி, அனந்தம்னா அனந்தம்னா அசங்கியாகம் இத்தியர்த்தே பிரயோகம் அஸ்தி, அனந்த சப்தஸ்ய எவ்வளவு சொல்ல முடியாது, அப்ப அனந்தம் இது பத பிரயோகம் அஸ்தி, பரந்து அத்ர தஸ்மின் அர்த்தேன அந்தோ நாம பரிச்சேத நவித்யதே அந்தஹ யஸ்ய சஹ அனந்த அபரிச்சின்னம் இத்யர்த்தே, சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம இத்யத்ராபி ததேவ அன்யதா அன்யதா
2: ஏகத்வம்
0: அநேகானி பிரம்மாணி இது கலு உத்தம் ஸ்யாத், அனந்த அனந்தத்துவம் நாம அசங்கியாகத்துவம் இத்தியர்த்தச்சேத் ஏகம் பிரம்ம இது தியக்தம் ஸ்யாத், அதஹ ததா ஸ அர்த்தா தத்ர நாஸ்தி,
1: பரந்து அத்ர து சக்திரேவ ததா உத்தம் வக்தும் சக்யதே,
0: சக்திரபி விசித்ரா சக்தி
1: உத்தம் சக்தம் விவிதா இது உத்தம் பூர்வம், அத்ர து
2: சக்திர விவிதேவ ஸ்ருயதே,
0: சக்தி விஷய வக்தும் சக்யதே பரந்து அநேகத்துவமே வக்தும் சக்யதே,
2: தத்ர உபாதி
0: பதாந்திரேன உத்தம் கலு, தத்ராபி வியாக்யானம் ததா நாபேக்ஷதே, ஏனா अत्र विचित्र शब्देन तत्र अनेकत्वं अनेकत्वं।

0: विवक्षितं तदानीमपि विचित्रा इति उक्तं खलु
1: तत्र कार्यभेदात् तदनुकूलशक्तिः औपाधिकभेदः च यदि एकत्वम् अपेक्षते
0: एकत्वम् अपेक्षते चेदपि औपाधिकभेदः इति वक्तव्यं भवति
1: कार्यभेदात्
0: कार्यभेदेन एवं प्रवर्तनभेदेन तदपि वक्तुं शक्यते द्वयथापि अस्ति निरूपणं पश्यामः
2: अनन्ताभिरेव शक्तिभिः जगतः जनकं शासकं च ब्रह्म भवति
0: अनन्ताभिरेव शक्तिभिः अपरिच्छिन्नाभिरेव शक्तिभिः जगतः जनकं शासकं च ब्रह्म भवति सृष्टिकर्तृ परिपालनकर्तृ च भवति शासकं परिपालनकर्तृ शासकं शासकः इल शासकं ब्रह्मा नपुंसकलिङ्गम् अनार
2: तथा हि श्रूयते एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकः
0: तस्थुः न छान्दसप्रयोगं तस्थौ न वर्णं तस्थुः इति छान्दसं रूपं
2: य इमान् लोकः
0: तस्थुः न तप् ले बहुवचनं पदं शरीयता अर्गन अंग शरीया वराद तस्थौ
2: एक
0: इति एकवचनं तस्थुः
2: तस्थौ
0: इति बहुवचनं एक एव रुद्रो एकवचनं तस्थुः
2: इमान् लोकान् ईशतः ईशिनीभिः यः सर्वान् लोकान् ईशतः ईशनीभिर्जननीभिः परमशक्तिभिः इत्यर्थे
0: अत्र किञ्चित् इतोपि अस्ति तुरीयमिमं लोकम् ईशते ईशनीयुः जननीयुः अदनु कडयद अत्र कथं वर्तते इदं कुत्रत्यं वाक्यम् इति मयापि न ज्ञायते मया न दृष्टम् एतावता उपनिषद् अस्ति वा तत्र मया न पठिता तत्र दृष्टवान् तत्र स्यात् अथर्वशिराः इति उपनिषदस्ति अदलिरे एतृक तत् द्रष्टव्यम् एकवारं तत्र स्यात् ईशनीयुः जननीयुः तुरीयमिमं लोकम् ईशते ईशनीयुः जननीयुः ईशनीयुः इति सुबन्तपदम् अद् तिङन्तमिल्ल ईशनीयुः अस्ति इत्येव भवति पदम् अत्र एतैः व्याख्यानं कृतमस्ति व्याख्याकारैः आचार्यैः छा इमं लोकं शुद्धं शुद्धमिश्र अशुद्धाश्वरूपं लोकत्रयं तुरीयम् उक्तलोकत्रयापेक्षया चतुर्थं लोकत्रयम् इत्यस्यापि किञ्चित् व्याख्यानं कृतम् इमं लोकं शुद्धमिश्र अशुद्ध अध्वरूपं लोकत्रयं शुद्धवं मिश्रवम् अशुद्धवम् आरुककुडि लोकत्रयं तत् तत् तदपेक्षया अन्यत् तुरीयम् उक्तलोकत्रयापेक्षया चतुर्थम् अध्वनाम् अध्वपते श्रेष्ठस्य अध्वनः पारमशीये पारमशीयेति सर्वाधिक सर्वाधिकारिप्रेप्सनीयत्वेन श्रुतिसिद्धम् अध्वनाम् मध्ये अतिश्रेष्ठस्य शुद्धाध्वनः अप्युपरि स्थितम् परमाकाशरूपम् परमपदञ्च इति अस्तु ईशते ईष्टे ईशनीयुः इति पदम् गृहीतमस्ति एतैः ईशनीयुः ईशनानुकूल इच्छाशक्तिमान् जननीयुः जननानुकूल इच्छाशक्तिमान् ईशनम् ऐश्वर्यम् जननम् जनैतृत्वम् इत्यादि व्याख्यानं कृतमस्ति तर्हि तत् पदं वर्तते इत्येव ज्ञायते अस्तु शक्तिकामिकर्तके श्रुति एतृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृक
2: समवायिकारणत्वं सिद्ध्यति.
0: समवायिकारणम् इति तु उपादानकारणम् इत्यर्थे प्रयुक्तं. प्रपञ्चं प्रति उपादानकारणत्वं सिद्ध्यति. कुतः? शक्तिद्वारा. स्वरूपेण तु परिणामं न कर्तुं शक्यते, नेष्यते. श्रुतिविरोधात् अतः शक्तिद्वारा परिणाम इति वक्तव्यं. तदुक्तम् अनन्तशक्तिमत्वात् ब्रह्मणः अपरिच्छिन्न प्रपञ्च समवायिकारणत्वम्. अपरिच्छिन्नमान प्रपञ्चं, प्रपञ्चौ बहु विस्तृतं व्याप्तः वर्तते. तत्प्रति समवायिकारणत्वम् उपादानकारणत्वं परमात्मनः सिद्ध्यति. समवायिनी कथं शक्तिः भवति? समवेता खलु तर्हि भोदीयभाषया उच्यते चेत् तथा समवेता इति खलु वक्तव्यम्. अस्तु, तत्र समवेतं, समवायि इत्यादि शब्दाः वस्तुगत्या कदा प्रयोक्तव्याः? समवायसम्बन्धत्वे यच्छन्ति नम्ब वेदपण्डरदार्थं एडुकणं. समवायसम्बन्धत्वे उत्तु कृतिल्ल. तर्हि
1: शक्तिः तर्हि ब्रह्मणि विशिष्टत्वं कथं, केन सम्बन्धेन?
0: तादात्म्यसम्बन्धेन इति वदन्ति. तादात्म्यसम्बन्धेन इत्युच्यते. तत् समवाय तादात्म्ययोः को भेदः इति अनन्तरं वदामि.
2: इदानीं निमित्तकारणं नास्ति,
0: निमित्तकारणमिल्ल, उपादानकारणं. சத்தியம் நிமித்த காரணம் மட்டும் இல்ல, நிமித்த காரணம் கேவல நிமித்த காரணம், கர்த்திருத்வேன நிமித்த காரணம், உபாதானத்துவம் அஸ்தி சக்தி துவாரா உபாதான காரணம் ச சக்திமத்வேன உபாதான காரணம்
3: அத்தியந்தாபேதம் சொல்ல முடியாது.
0: சக்திசக்திமதோ அபேதஹ இது நைய்யாயிகைஹி தத்ர சமவாய சம்பந்தஸ்ய ஸ்தலானி யானி உச்யந்தே தத்ர சர்வத்ராபி தாதாத்மியம் குணகுணினோ தாதாத்மியம் க்ரியா க்ரியாவதோ விசேஷ பதார்த்தத்தை உத்தரவாதம் இல்ல. நைய்யாயிகால் சமவாயத்துக்கு எந்த ஸ்தானம் கொடுத்திருக்காரோ அந்த இடத்துல தாதாத்மியம் வரும்னு சொல்றேன். ததர்த்தம் உத்தம்
4: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address. And the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Ramsarathena Parishinjameti Sajam Parishinjati Satyam Dathena Parishinjameti Sajah Hanyaradarsam Paravaritya Satyam
4: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radio. The 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
7: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. ओम नमः शिवाय।
8: तो वे ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल के आश्रम में जाते हैं। वहां एक खंभे से बंधे हुए अश्व को देखकर इन्हें बहुत क्रोध आता है और महर्षि के आश्रम में उत्पात शुरू कर देते हैं। इधर महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं, उत्पात से उनकी समाधि भंग हो जाती है, उन्हें बड़ा क्रोध आता है। उनके क्रोधाग्नि से मरा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। इधर दूत ने महाराज सगर को समाचार सुनाया कि महर्षि कपिल के आश्रम में आपका यज्ञीय अश्व बना हुआ है और महर्षि के कोप से 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं। सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान जाते हैं, जाकर महर्षि की प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमारे भाइयों से भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम यज्ञ अश्व को ले जाओ और अपने यज्ञ को संपन्न करो। अंशुमान ने पूछा कि जो हमारे भाई जलकर राख हो गए हैं इनका उद्धार कैसे होगा। महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म साप से दग्ध हुए लोगों का उद्धार केवल गंगा ही कर सकती है। तुम भगवती गंगा की तपस्या करो, गंगा प्रसन्न होकर जब धरती पर आएगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। अंशुमान अश्व को ले जाते हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, तदनंतर तपस्या करने लग जाते हैं। तीन पीढ़ी तपस्या की इसके बाद गंगा का अवतरण होता है। जैसे हम कोई जैसे किसी के दादा दुकान खोले, उसके बाद पिता फैक्ट्री खोलता है और जो पुत्र होता है उस फैक्ट्री के द्वारा संसार में विस्तार करता है। इसी प्रकार से महाराज अंशुमान तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के सुपुत्र जब महाराज भगीरथी ने तपस्या करी तब जाकर भगवती गंगा प्रसन्न होकर दर्शन दिया। गंगा ने कहा तुम वरदान मांग लो। गंगा के कहने से ये पुनः प्रार्थना की कि मां मैं अपने भाइयों को उद्धार के लिए तुम्हें धरती पर आमंत्रित करता हूं। भगवती गंगा ने कहा मैं तो पृथ्वी पर चलने को राजी हूं परंतु हमारे वेग को कौन रोकेगा, हमारे प्रवाह को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी से मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि भगवान शंकर ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। दोबारा पुनः हिमालय जाते हैं, वहां एक शिव की पिंडी बना करके भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। भगवान शिव महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं वरम ब्रूही वरम ऋणीस्व। महाराज भगीरथी हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान शंकर दिव्य मुद्रा में बरधस्थ होकर दर्शन दे रहे हैं। महाराज भगीरथी ने कहा कि भगवती गंगा ने कहा है मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए राजी हूं परंतु हमारे वेग को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवती गंगा के वेग को संभालने के लिए पधारिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। इधर प्रसन्न होकर भगीरथी आते हैं। जैसे ही ब्रह्मांड को भेदन करती हुई गंगा जी धरती पर पधारती है। उसी गंगा जी का चित्रण इस 17वें श्लोक में किया गया है कि जो गंगा आकाश को व्याप्त करके रखी है उस गंगा की शोभा कैसी है। तो जिस प्रकार से जल में सूर्य चंद्र तारा प्रतिबिंबित होते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, इस तरह से तारा गण की समुदाय से उनके प्रतिफलन से भगवती गंगा की शोभा उज्जवल फेन के समान बहुत ही सुंदर लग रही है। वही गंगा जब भगवान के सिर में आती है तो वह गंगा जी मानो चमकती हुई एक सुनहरला लकीर के समान भगवान शंकर की जटा में समा जाती है। जटा में भगवान शंकर उसको लपेट लेते हैं। भगवान शंकर में के जटा में जब गिरती है तो प्रीखत लघुदृष्ट शिरसिते बहुत छोटी सी तारा के समान वह टिमटिमाने लगती है। वही गंगा के द्वारा जिस सागर को कुपित होकर अगस्त ऋषि ने पी लिया था, जो सागर खाली हो गया था, उस गंगा के प्रवास से पूरा सागर भर जाता है और उस समुद्र के द्वारा ये जगत दीपाकार रूप में परिणत हो जाता है। तव दिव्य अपुह धृत महिमम, आपके महिमा के विषय में क्या कहना, आपकी बड़ी दिव्य महिमा है। यह तो एक ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य है। इधर हम विचार करें कि जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का जब अवतरण हुआ, ज्ञान गंगा का अवतरण श्रुति के अनुसार ज्ञानम इच्छित शंकरा, भगवान शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये सगर जीव ही सगर है, गरेण सहित सगर, गर बोलते हैं जहर को, वासनाओं का जो जहर है जिससे मनुष्य पीड़ित रहता है, यह विद्या कामना वासना ही तो जहर है। इसके साथ यह जीवात्मा पैदा होता है। ये 60,000 पुत्र ये हमारे मन की अनंत वृत्तियां हैं। इन अनंत वृत्तियों से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, सारे वृत्तियों को के निरोध से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। जो अनादि काल से जीव और ब्रह्म के बीच में वासनाओं का खाई बना हुआ है, उस खाई को यह वेदांत जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान पाटने का काम करता है। यह जीव ही सगर है, मन के अनंत वृत्तियां ही 60,000 पुत्र हैं। और जब मनुष्य ऋषि महर्षियों का आश्रय लेता है, सदगुरु का वही कपिल महर्षि है, उनसे प्रेरित होकर के भगवान शंकर से दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठाचार्य जी कहते हैं, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज का यह कथन है, तत्मस्यादिवाक्योत्थम सम्यक जन मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। तत्मस्यादि से उत्त जो ज्ञान है वह ज्ञान अविद्या को समाप्त करके स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह जो ज्ञान है इसी ज्ञान के द्वारा जीव परम शांति को उपलब्ध होता है। दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो परम शांति को उपलब्ध करा सके। आगे विचार करते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर, रथ क्षोणीयंता सतधृतिरगिन्द्रो धनुरथो रथांके चंद्रार्को रथ चरण पाणी सर इति दिधावस्ते कोयम् त्रिपुण तृणमाडम्बर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय पृथक छोणी यंता। अब यहां पर ज्ञान गंगा के महिमा को बतला रहे हैं। ज्ञान होने पर क्या होता है? इधर एक बड़ा भारी त्रिपुरासुर है, भोगी और योगी दोनों ही तपस्या करते हैं। भोगी की तपस्या का लक्ष्य होता है शक्ति संचय करके भोग करना, साम्राज्य को बढ़ाना, और योगी तपस्या करता है, वह तपस्या से ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, यदि वह सत्संगी है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उस धन का सदुपयोग करता है, सुंदर धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मठ मंदिर संतों के सेवा में लगाता है, और वह उस धन के द्वारा दिवाचन करके परम गति को प्राप्त करता है। और वही धन किसी अविवेकी के पास नासमझ के बाद है, तो वह अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगों में उसके धन खर्च होते हैं, केस मुकदमे में खर्च होते हैं, जुआ शराब में खर्च होता है, क्लेश में, कलह में, लड़ाई झगड़े में खर्च करता है। कोई दान के लिए आए तो एक कौड़ी नहीं दे पाता है, परंतु ये काले कोट वाले को जो मसाज के दूत है, इनको जो है हमेशा वह अपने धन को उसी में खर्च करता है, अर्थात दुरुपयोग में अपने धन को लगा देता है। एक ही धन है, ज्ञानी सदुपयोग करता है, धन से परमार्थ को सिद्ध करता है, परमार्थ के साधन में लगाता है, और जो अज्ञानी है उस धन के द्वारा अय्याशी पूर्वक जीवन बिताता है। स्वयं वेदव्यास भगवान कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहे न। धन ही नहीं, अपने आयु का ज्ञानी सदुपयोग करता है तो अज्ञानी दुरुपयोग करता है, निद्रिया कलहे न। आप लोग भगवान कृपा से इससे मुक्त हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, उठकर जल्दी स्नान करके नित्य कर्म करके 7 बजे प्रेमपुरी पधार जाते हैं। अन्यथा विवेक न होता तो आप 8 बजे तक सोते और 9 बजे तैयार होके सीधा ऑफिस में दौड़ते। जैसे एक मुमुक्षु तपस्या करता है वैसे एक व्यापारी भी करता है। तो व्यापारी तपस्या करता है, उस व्यापारी की तपस्या का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। व्यापार ही बड़ा भारी कष्ट होता है, पर वो जो कष्ट तपोमय है उसके द्वारा मात्र धन संचय करता, धन भी भोग के लिए, न वह उससे दान करता है, न दीन गरीब की सेवा करता है। तो दोनों में इतना ही फर्क है। इधर यहां पर भी एक बड़ा भारी जो असुर है जिसका नाम है त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। उसके वरदान का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वह यह है कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है, परंतु वह तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो प्रसन्न कर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तू वरदान मांग। तो ब्रह्मा जी से वरदान में वह मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे किसी से मौत न हो। आसुरी प्रकृति वाले को मौत से बहुत भय लगता है। सबसे पहला उनका मांग होता है अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, अमर बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अमर तो केवल तत्व ज्ञान से हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मता है वह मरता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो मरेगा तो जन्मेगा, जो जन्मता है सो मरता है। इसलिए तू दूसरा वरदान मांग ले। त्रिपुरासुर विचार कर अमर के समान वरदान मांगता है कि आप कृपा से हमें ऐसा तीन महल दीजिए, विमान बनाइए, जो देवताओं से, मनुष्यों से, असुरों से अभेद्य हो और उसका भेदन भी हो, तो तीनों एक साथ हो तभी जाके भेदन हो सके। एक लौहमय विमान, दूसरा चांदीमय, तीसरा स्वर्णमय, तीन विमान वरदान में मांगता है। उस विमान पर सवार होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। सारे देवता भाग खड़े हुए, कंदराओं में जाकर तपस्या करने लगे। एक छत्र ब्रह्मांड में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग भग भग कर कैलाश जाते हैं, भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, महादेव त्राही माम त्राही माम। त्रिपुरासुर पूरे संसार में आतंक मचा दिया है, आप कृपा करके इसका बल कीजिए, इससे हमें निजात दिलाइए। त्रिपुरासुर सबसे पहले देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा बंद करा दी, यज्ञ याग बंद करा दिया और कहा कि मत्तः परतरम को अन्य, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक सबकी आत्मा ब्रह्म ईश्वर हूं, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। सबको ऐसा उपदेश करके यज्ञ याग सत्कर्म से सबको निवृत्त करा दिया। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा महादेव को सुनाई तो महादेव देवताओं को आश्वासन देकर विदा करते हैं और स्वयं ही त्रिपुरासुर के संहार के लिए पधारते हैं। रथोणी यंता, त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है, सबसे अभेद्य है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथ चरण पाणी जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरासुर तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पूर्व खलक्कट एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उसे विद्ध होकर तीनों पूर्व में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। या तो एक पौराणिक तथ्य है, आई विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है, और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है, और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधी लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पितृ देव भव, पिता को साक्षात महादेव माने, आचार देव भव गुरु आचार्य को देवता समझें। इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है। यत यत कर्म करो में तत् तद अखिलम संभो तबाराधन, और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है। भगवान के नाम का उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे। उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन्य क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे। वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था। यह सनातन धर्म है कि अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अतिथि देवो भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा सेठ की पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा। जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया सेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे। उन्होंने पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपये की रसीद किस बात की काटते हो? क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा, महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसे धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही वही विद्युत है, जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी। सुधाया पानम अमृतत्व सहेतु हो, सुधा का पान ही अमृतत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो, या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतःकरण निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
6: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
9: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajur Vedam, Karmashaka, Adhyayam 31.
10: Atha एकत्रिंशोऽध्यायः। ॐ

0: इति एकत्रिंशोऽध्यायः। ओम
1: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर्क द फॉलोइंग इज सामवेद संहिता पूर्वार्चिकम प्रपाटक 4 दशती 4।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हर ओम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Anaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनार या संत की कहानी, जिनका नाम है अनायार। दक्षिण के तिरुचिरापल्ली के उत्तर का क्षेत्र प्राचीन काल में मलनाड कहता था। यहाँ अहिरों का एक परिवार रहता था जो गौ पालन का कार्य करते थे। अहिर वंश प्राय कृष्ण परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं, पर यह परिवार पशुपतिनाथ शिव के प्रति समर्पित था। इस परिवार में अनायार का जन्म हुआ। अनायार की रुचि वंशीवादन और शिव भक्ति में थी। उनकी बंसी सुनकर सभी को प्रसन्न होता था। गाय चराने के लिए जब अनायार चारागाहों में पहुंचते तो प्रतिदिन अपनी बंसी द्वारा शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र की धुन निकालता। उसने संगीत के सप्त स्वरों में नमः शिवाय को ऐसा साधा कि वह अपनी भी सुख दुख भूल गया। इस अलौकिक मंत्र को जब वह भक्ति में लीन होकर बंसी के स्वर से निकालता था तो सर्वत्र संगीत के रूप में अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती। वंशी की स्वर माधुरी जड़ चेतन प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती। पशु पक्षी मानव सभी हृदय तंत्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें घास चरना बोलकर अनायार के समीप आकर खड़ी हो जाती थी। बछड़े माँ के धन से दूध पीना भूलकर खींचे चले आते। उस बंसी में निकले ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से पशु पक्षी जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं उसी स्थान पर चक्कर लगाते रहते थे। हिरण समूह कुलांचे भरना भूल कर बंसी के स्वरों में स्वयं को विस्मृत कर देते। मयूर समूह नृत्य छोड़कर शांतिचित होकर उस संगीत का पान करते। सांप शेर अथवा सभी जीव पारस्परिक शत्रुता भूल कर मुरली माधुरी में विमुक्त होकर एक साथ बैठे रहते। आयना की इस एकनिष्ठ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव उनके समीप आ गए और उनसे कहा, बस इसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने अनायार को रुद्र पशुपतियार नाम प्रदान किया तो उनका दूसरा नाम रुद्र पशुपतियार हुआ। चित्तिलर ने कहा है कि जिस प्रकार बंसीवादन का विषय एवं सूक्ष्म वर्ग सभी को प्रसन्न कर देता था, उसी तरह विष्णुभक्त कैयालवार ने कृष्ण कन्हैया को की मुरलीवादन का वर्णन किया है। कालांतर में सूरदास ने ऐसा वर्णन उत्तरी भारत हिंदी भाषा में भी की है। ये सभी भक्त एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि पशु पक्षी से लेकर मानव तक सभी को एक समान बांधने की क्षमता केवल संगीत में है, और जो संगीत शिव या भगवान के प्रति समर्पित हो वह सारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। संगीत एक ऐसा सशक्त साधन है जो ऐसी समर्थता ला सकता है। एक कोशीय जीव से लेकर सुविकसित मानव तक सभी में जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है उसी के आधार पर संसार टिकाऊ हुआ है। अनायार जैसे भक्त अथवा शिव श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार जब बंसी की स्वर लहरियां वायुमंडल में दसों दिशाओं में फैलाते हैं तो जीव मात्र में व्याप्त एकात्मकता को उद्घाटित कर उनमें एक सामरस्य स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो देवलोक में व्याप्त सभी देवगण अपना अपना हविर भाग या प्रसाद ग्रहण करना भूलकर गोकुल में कृष्ण की मुरली के रस का पान करने पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ अनायार के वंशीवादन में थी, इसलिए यह है उच्च कोटि के संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो। the 24/7 spiritual channel from shivam.org.
3: Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: ये संकेत वहां भी ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत कर रहे हैं, जो विस्पष्टार प्रति नाम उनके लिए, तो जीवन में क्या होना चाहिए, तो पहले श्रवण, श्रवण के द्वारा उसके गुणधर्मों का विवेक, गुणधर्मों का विवेक होने पर हमारी इच्छा उसमें होती है, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न करना, और प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे वो पात्रता, वो अधिकारिता हमारे में आ जाती है, वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि प्रयत्न करते हुए तुम अधिकारी बन ही जाओ। कितने लोग जीवन में और अध्ययन करते हैं, लेकिन सब जो है कंपटीशन में जाते हैं तो क्या सब अधिकारी बन जाते और सबका चयन हो जाता? यही तो शास्त्र कहता बार बार, धर्मशील कोटि न मोह कोऊ एक एक होए धर्म श्रद्धाधारी। माने करोड़ों व्यक्तियों में, अनंत व्यक्तियों में कोई विरले ही है धर्म और श्रुति के अनुकूल चलने वाले, और उन चलने वालों में भी उस प्रकार से कर्म करने वाले, प्रयत्न करने वाले, उनमें भी बहुत कम, उनमें भी छटनी हो जाती और कहने लगे उससे आगे श्रेणी चलती है। तो ऐसे प्रयत्न करने वालों में कोई एक ही सिद्धि को मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे, इस सिद्धि के लिए कोई एक निकलता, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्य, कोई एक ही प्राप्त। तो ये जीवन की, और सर्वत्र, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ये नियम सर्वत्र विद्यमान, ये संकेत। इसलिए यहां कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, और प्रयास की श्रेणी बतलाई तो श्रद्धा कब आएगी और श्रद्धा भी कैसी, इसको लेके हम दृष्टांत एक दे रहे थे। क्या अवंतिका का राजा, इन दृष्टांतों से सरल में समझ में आ जाती, अवंतिका का राजा शिकार खेलने के लिए मेदपाट के आसपास जंगल में गया और भील को वहां सहयोगी बना लिया। भील ने उसकी सेवा की, एक महीने तक रहा, और भील ने जब जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ उसका सहयोग किया तो उस पर प्रसन्न हो गया। तो उसने क्या कहा, जब चलने लगा प्रसन्न हो गया कि भाई तू हमसे कुछ, अब जो है जब उससे कहा तो उसने क्या देखा था कि वो जो है प्रातः काल बैठा हुआ और क्या कर रहा था, भगवान शिव की पूजा, और वो ही नहीं कर रहा था, करते तो सब है लेकिन करते हुए भी और जो है, भूल जाते हैं, ये भूल ही तो सब काम खराब कर देती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि इसको न करता हो, आप कहो कैसे, तो आपको एक मोटे रूप में बतलाऊं, आप पालती मार के बैठ जाओ है? अब आपके जंघाओं का जो पालती का रूप बन गया, ये क्या हो गया, मान लो एक मंदिर का चबूतरा हो गया, क्या हो गया, मंदिर का चबूतरा हो गया, ये जो आपका है वो मंदिर का पूरा जो है परकोटा बन गया, हृदय आपका गर्भग्रह हो गया, और ये उसका गुम्बद हो गया, और जटाएं हो भावा जी जैसी तो बांध लो, जूरा तो कंगूरा हो गया है ना, कंगूरा उसका बन गया। अच्छा, अब जो है वो जो इस गर्भग्रह के अंदर जो बैठा है वही क्या है, शिव विग्रह, वो आत्मा जो विद्यमान है वही क्या है, शिव विग्रह, और बंद करके चारों तरफ से बंद करके प्रत्येक प्राणी सुसुप्ति अवस्था में कहां जाता, वहीं जाता है, उसी की पूजा करता, उसको जो है वो कोई जान ही नहीं पाता, वो भी नहीं जान पाता, और उसने जो है धीरे से उसकी जब रुचि पैदा हुई और रुचि पैदा हुई तो सीमन थोड़ी हटाई और देखा कि यह जो है इसकी उपासना करता है, तो उपासना करता तो लोक से भी समझ लो ऐसे भी समझ लो। अब जब उसने देखा तो उसके हृदय में भी रुचि पैदा हो गई। रुचि ही तो पैदा हुई पहले, और कैसे हुई तो देख करके, देख करके, सुन करके। जीवन में जो है हम अनुभव करते यही देखना, और जब उसके अंदर रुचि हुई तो रुचि के अनुसार उसके अंदर भी आया कि मैं जो हूं भी पूजा आदि करूं। अब ये क्या था तो भीड़, तो ये कोई नियम नहीं। प्राणी, कोई भी प्राणी कहां है कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। कब परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है और कब उसके हृदय में वो इच्छा पैदा हो जाती है ये कोई नियम नहीं। ये नहीं कि बाबा जी के हृदय में ही पैदा होगी, गुफा में बैठे हुए एकांत में बैठे उनके हृदय में पैदा होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। वो नियम है एक बुद्धि की शुद्धि करने का नियम, अपहरे गृणाम संगमे नदीनाम विप्रो धिया अजायत। वो एक जो है हमारी विप्र बुद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन बुद्धि प्राप्त होने पर कोई ऐसा नियम नहीं कि एक व्हील है जो व्यवहार में लोक व्यवहार में चल रहा है और उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर भी हो सकता। परमात्मा की कब किस पर कृपा हो जाती है तो तभी उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वो दृष्टि पैदा हो जाती, वो रुचि पैदा हो जाती, और व्हील के भी रुचि पैदा हो गई। और वो राजा जाने लगा, राजा कोई दूसरा नहीं जीव ही समझ लेना। अब जब राजा जाने लगा और जो पंच विषयों का उपभोग करना यही शिकार करना है और कोई शिकार करना नहीं, फिर किसके सहयोग से करते हो तो बुद्धि आदि के सहयोग से ही करते हो, बगैर उसके नहीं कर सकोगे। तो ये सब सारे रूपक इसीलिए बनाए गए। तो अब जो है उस व्हील से कहा कि तू कुछ मांग ले। उसने कहा मुझे तो जो है ये विग्रह दे दो। उसने थोड़ा टालना भी चाह लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और जो है उसकी रुचि जो पक्की हो गई, और जब रुचि पक्की हो गई तो राजा ने कहा चलो ठीक, इसने सेवा की है, ये उसकी प्रसन्नता थी। अब जो है प्रसाद से, प्रसन्नता से उसने उसको दे दिया। उसने उसका नियम पूछा। राजा ने सोचा ये भील जाति का है, ये नियम को निर्वाह कर सकेगा, पवित्रता रख सकेगा या नहीं रख सकेगा, इसलिए उसने सामान्यतया उसकी विधि बतला दी। जल पुष्प पत्र आदि चढ़ा देना, ये तो जंगल में मिल ही जाते, लेकिन एक नियम बतला दिया। एक न कोई जीवन में एक हमारा निश्चय होना चाहिए, नियम होना चाहिए जिस पर हम आरूढ़ रहे, और वही नियम हमको जो है गति तक पहुंचा देता। और ऐसा ही जब जो है उससे कहा कि एक नियम रखना, कहा क्या, कहा ये जो शिव है इसे प्रिय क्या है, जल भी प्रिय, ये सब तो प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय क्या है जिसका ही उसने आवरण बना लिया है। चिता भस्म लेप सृगप रोटी परिकर, मने जो है अपने सारे शरीर में जिसने क्या लगा रखा, कहा भस्म। और ये भस्म किसका प्रतीक है, भस्म प्रतीक है सारी उपाधियों को नष्ट करके जो शेषतया मूल तत्व है उसका। भई जो उपाधि थी, जो नाम रूप था, और वह जल गया, लकड़ी, लकड़ी क्या एक नाम है और उसका आकार प्रकार, उसे जला दिया तो क्या रह गया, राख रह गई, भस्म रह गई। अब लकड़ी नहीं कहोगे उसे, है ना, तो वो क्या है, राख। इसी प्रकार से सारे जगत की उपाधि जो नाम रूपात्मक है उसको जहां पर जला दिया जाता है, उसका जहां पर परित्याग कर दिया जाता है, और वो शेष जो बचता है उसका नाम है भस्म। और ऐसे शेष को धारण करने वाले कौन है, शिव, परात पर ब्रह्म। तो अवशेष तया जो रहने वाला है, इसलिए उसे कहा जाता संगो ही अयम पुरुष, किसी भी उपाधि में उसकी आसक्ति नहीं, निरुपाधिक जो है। तो इसलिए शिव को जो है निर्गुण निराकार मानते, राम की मूर्ति होगी सगुण साकार कहोगे, लेकिन जो है शिव विग्रह को निर्गुण निराकार की उपासना माना, संकेत किया। इसलिए उपासनाओं में भी थोड़ी चर्चा आ गई, कह दो प्रकार की उपासनाएं होती हैं, ये तो सब जानते हैं, एक अहंग्रह उपासना और एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना क्या है, आलम्बन प्रधानत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति प्रतीकोपासनम। प्रतीक उपासना क्या, गंडकी नदी से आप जो है गोलमोल प्रस्तर लेके आए, लेकिन उसको सिंहासन बना करके रखा, और क्या कहते हो, सालिग्राम भगवान। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहते, भोग भी लगाते सब करते हो। तो आपने उसका आश्रय लिया, एक सहारा बनाया और आलंबन बनाया उसे, और उसका आलंबन बना करके अब वहां पर वृत्ति क्या बन रही है, भाव क्या बना रहे, चिंतन क्या कर रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो ये सालिग्राम है। और कौन से सालिग्राम है, का सृष्टि करने वाले, स्थिति करने वाले, लय करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसे ये सालिग्राम भगवान हैं, ऐसा चिंतन करते, ठीक है ना। ये तो हो गई प्रतीक उपासना, हमने एक सारा ले लिया, एक अवलंबन ले लिया, क्योंकि बगैर अवलंबन के चलना हमारे लिए कठिन है, बारहवें अध्याय में पढ़ते ही हो। तब ये तो हो गई प्रतीक उपासना, कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह, कोई भी सहारा ले लेना। आगे कहा अहंगर उपासना, अहंगर उपासना में क्या रह जाता, आलंबन त्रिस्कृत्वे सति उत्कृष्ट चिंतनम इति अहंग्रोपासनम। वहां पर आलंबन अपने आप छूट जाता है, छोड़ता है ऐसा नहीं, आलंबन क्या होता का छूट जाता है, और आलंबन जब छूट जाता है लेकिन उत्कृष्ट चिंतन छूटता नहीं, उस उत्कृष्टता का उसे बोध रहता है कि ये सारा जगत कहां से हुआ है। तो कहने लगे जिस कारण से, ये तो हुआ है मान भूतान जायन्ते, तो उसी से हुआ है, वही एक मूल तत्व है, वही एक मूल शक्ति है, और वही मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा चिंतन वो करता है, वही मैं हूं। और ये चिंतन करना ही क्या है, अहंगर उपासना। और अब किसकी चर्चा कर देंगे, थोड़ी सी इसको सुन लो दृष्टांत को। अब जब जो है उसने उसको दे दिया तो नियम बतला दिया कि भस्म जो है जरूर चढ़ा देना, किसकी भस्म चढ़ाना, ध्यान रखना, चिता भस्म। और चिता भस्म का मतलब जानते हो, जहां पर नाम रूप उपाधि को हटा करके जो शेष बचे उसी का नाम है चिताभस्म। नाम भी नहीं रहा, रूप भी नहीं रहा, क्या रह गया, केवल जो अवशेष तया जो सत्तात्मक है वो रह गया, उसको चढ़ा देना। उसमें भी आसक्ति मत रखना, माने उसका त्याग कर देना, चढ़ा देने का मतलब क्या, त्याग कर, ध्यान रखो। अब जब इस प्रकार से जब कहा उससे, तो उसने जो है 12 वर्ष तक इस नियम को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। और जब वर्षा हो गई, चारों तरफ जल हो गया, चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बेचारा दुखी होने लगा कि एक छोटे से नियम को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आप तो मैं शरीर का ही त्याग कर दूंगा, धिक्कार है मेरे लिए। और जब ऐसे कहने लगा तो उसकी जो धर्म पत्नी थी आहुति, जो उसका सहयोग करने वाली थी, यासी को वृत्ति कह दो, तो उसने जो है जब उससे कहा, तो उसने जब अपनी वेदना व्यक्त की तो उसने कहा चिंता करने की बात क्या, कहा क्या मतलब, कहा झोपड़ी है ना, कहा तो, कहा इसमें आग लगा दूंगी, अंदर सूखी है, और मैं बैठ जाऊंगी, जल जाऊंगी, चिता भस्म, कहा तू, कहा हां, जब ये नाम रूप उपाधि जो है, सब मिथ्या ही है, और इसका जाना निश्चित ही है, और ये यदि जो है जो वस्तु हमसे छूटने वाली है, तो क्यों ना इसको देकर के भगवान को हम दाता बन जाए, ये बढ़िया श्रेय हमें मिलेगा। और ये भाव तो उसने कहा तू ठीक कह दी, और वो उसमें बैठ गई और बैठ करके आग लगा दी, और आग लगा करके चिंतन क्या कर रही, जैसे ही उसमें बैठी आग जलने लगी, जहां तक उसे बोध है, और कहने लगी पोस्ट

0: विचार उसका क्या है, क्या विचार करने लगी। पुष्पाणि सन्त, पुष्प हैं और उन पुष्पों को मैं तुम्हारे लिए अर्पण, लेकिन पुष्प क्या है तो क्या कहने लगी, पुष्पाणि सन्त तव देव, हे देव हे भगवान, आज मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, लेकिन पूजा किससे कर रही हूं, अब वन्य पुष्पों से नहीं, वनस्पति औषधियों पर होने वाले पुष्पों से नहीं। कहा ये तो तुम्हारे द्वारा ये निर्मित हैं, हमारे द्वारा निर्मित पुष्पों से नहीं, क्या है का? कहा पुष्पाणि संत तव देव ममेन्द्रियाणि, हमारी आंख नासिका आदि कान ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं को मैं पुष्पों की जगह पर आपको अर्पित कर रही हूं। और कहने लगे इतना ही नहीं, आगे कहा धूपो अगर बप रिदम, और धूप बत्ती की जगह पर ये शरीर ही मैं आपको धूप की बत्ती की जगह पर आपको अर्पित कर रही हूं। धूपो अगर बप रिदम हृदयम प्रदीपा है दीपम दर्शयामी, और दीपक की जगह पर मैं अपने हृदय को ही आपको अर्पित कर रही हूं। प्राण हवीस हव्य की जगह पर, आहुति की जगह पर हम अपने प्राणों की ही आहुति आपको, हम लोग भी कहते हैं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा, लेकिन वो कहना ही कहना है, ये दृष्टि आ जाए। अब संकेत किया और कहने लगे आगे, प्राणा हवीश अंत में चाहते हो अक्षतान समर्पयामि, हैं क्या, तो चावल जो है वो क्या है, कर्णानि तवाक्षताश्च, हमारे पैर हमारे हाथ जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो हम तुम्हें अक्षत की जगह पर समर्पित कर रही हूं। और आगे कह दिया पूजा फलम व्रजत साम प्रतमेश जीवा, यह जीव जो हमारे में जीव भाव है, यह इस पूजा के फल को प्राप्त हो और आपके चरणों को प्राप्त करे। ये संकेत कहते हुए उसने दिला दिया, भस्म तैयार हो गई और निर्विकार भाव से वह आहुक जो है पूजा करने बैठ गया। और जब पूजा करने बैठ गया तो उसके जीवन में तत्परता थी, हम कहते तो हैं संयतेन्द्रिया तत्पर, उसके जीवन में वो संलग्नता थी, पूजा करने में इतना संलग्न हो गया, इतने मन से करता था, इधर उधर उसका चिंतन नहीं होता था। और जब वो पूजा करने बैठ गया, क्रम से सारी वस्तुओं को अर्पित कर दिया, और जब पूजा में संलग्न हो गया तो उसकी वृत्ति अन्य रह नहीं गई, तो जैसे स्वभाव उसका बन गया था, रोजाना कहता था भोग का समय आया कि अरे भोग तो ले आओ, और जैसे आवाज सुनी तो वह जो है दिव्य जो है रूप में आकर के दिव्य भोग को लेकर के उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा तो होश आया, और जैसे ही उसे होश आया कहा तू तो जल गई थी। कहा हां आपने आवाज लगाई, मैं तो जल गई थी, बैठी तो मुझे कुछ पता नहीं, बैठी उस समय पता चला, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं चला, लेकिन आपने आवाज लगाई तो भोग तैयार रखा था और वो मैं लेके। कहने लगा धन्य है प्रभु, आप छिप करके ये सारा काम कर रहे हो, कृपा करो अब आप जो है, और भगवान ने उसे दर्शन दिया, ये साक्षात्कार हुआ। तो ये साक्षात्कार कब हुआ, ये साक्षात्कार हुआ तब जब हमने अपने अंतःकरण को अपनी इंद्रियों को और उसके समर्पित कर दिया। ये सब भगवान बार बार कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तो कर्ता भोक्ता बने हुए है ना, ये साक्षात्कार की स्थिति होती तो विस्पष्ट रुचि नाम जो साक्षात्कार करना चाहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका संप्रयन कर रहे हैं। अब आपको एक बात और सुना दूं, अभी जो हम प्रतीक उपासना की बात करते, पहले हम प्रतीक से चलते हैं और प्रतीक से अहंग्रह में पहुंच रुचि होती है, और रुचि श्रद्धा में ले जाती है, और श्रद्धा में सत्य का साक्षात्कार करा देती है, चाहे वो कैवल्य उपनिषद हो, चाहे कोई उपनिषद हो, और चाहे सामान्य शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने प्रेरित किए वो हो। आप मीरा की कथा सुनते हो, मीरा की जीवनचर्या भी आप जानते हो, कहानी सब जानते हो, उसके पदों को भी गाते हो। मीरा ने पहले क्या है, बचपन में ही है किसी आचार्य से कृष्ण की मूर्ति देखी और जो है उसमें प्रेम हो गया, उसकी आराधना करने लगी और आगे चल करके और उसी का श्रवण होने लगा, तो विशेष रुचि हो गई, और विशेष जब रुचि हो गई तो रुचि कितनी हो गई, विशेष इतनी हो गई कि उसी में ही मीरा निहित हो गई और क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। अब जाकर छोड़ दई कुल की कान कहा करे है मेरो कोई, ये मीरा की भावना, जो मीरा जीवन भर कहती रही कि मोर मुकुट वाला मेरा पति है ना, जीवन भर क्या कहा कि मोर मुकुट वाला मेरा, तुलसीदास की भी किंवदंती आती। लेकिन आप विचार करो, अब गीता में बोलते हो अव्यविचारी भक्ति है? अब मीरा की भक्ति कैसी है, अब आप कहते तो हो लेकिन कैसे, आगे पद मीरा क्या बोलती, जीवन भर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ये मित्र है या मेरा ये पति है, और जब प्राप्त होने का समय आ जाए तो नाम बदल दे, कहे कि देवदत्त मेरा पति है, और जब प्राप्त होने पति से मिलने का समय आ जाए तो कह दे कि नहीं नहीं धर्मदत्त मेरा पति है, तो उसे क्या कहोगे, विश्वास करोगे। जीवन भर जिसने कहा कि मोर मुकुट है वाला मेरा पति, और जब पति प्राप्त हुआ मिला साक्षात्कार हुआ तो क्या कहा, पायो जी पायो मैंने, क्या मतलब, विचार करने की बात, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो कहना चाहिए श्याम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। कोई किसान कहे कि मैंने चना बोया था और काटने पहुंचे तो गेहूं मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन क्या है, पहले थी भागो भक्ति प्रतीक भक्ति, लेकिन अब मीरा कहां पहुंची, और मीरा कौन है, जब मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा तो तुलसीदास ने क्या लिखा था, तजोरे मन हरे विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग तजोरे मन, और मीरा ने वो मान करके छोड़ दिया है, और पहुंच गई वृंदावन, हो गई वैरागी एक संकेत मात्र से, लेकिन वो तुलसीदास तो पीछे रह गए, और मीरा उनसे है? गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चक्कर हो गया। मीरा ने जो है क्या स्थिति प्राप्त की, तो यही नहीं कहा राम रतन धन पाने का मतलब क्या, मीरा के जीवन में राम और कृष्ण का भेद ही मिट गया, ये राम है ये कृष्ण ये नहीं, कैसे कहोगे, तो जो श्रुति का निचोड़ है सार है उसको मीरा आगे कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन ये राम रतन धन क्या है, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, ये वस्तु सामान्य वस्तु नहीं, वस्तु शब्द का प्रयोग किया, अमूल्य है जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, जो अनंत है जिसे ब्रह्म को अनंत कहा जाता, ऐसे ही अनंत से निप, और इतना ही नहीं कहा, जो श्रुति में अप्रमेय है अव्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया, मीरा ने सामान्य शब्दों में उनको कहकर बतला दिया, कहा ये वस्तु कैसी है, खर्च न होवे, क्या मतलब, मनुष्य में व्यय कभी हो ही नहीं सकता, परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, न्यूनता कभी आई नहीं, खर्च न होवे और चोर न लेवे, चोर क्या करेगा, एक देश से दूसरे देश में ही तो ले जाएगा, तो देशगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं है और वस्तुगत परिच्छिन्नता भी जिसमें नहीं, खर्च न होवे चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने, और ये तो कहते हो भृंगत्वात् भृंगत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, ऐसी स्थिति में मीरा पहुंच जाती। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर संकेत किया कि हमारे जीवन में जब आचार्य आदि का के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, शास्त्रों का हम आश्रय लेते हैं, और शास्त्रों का आश्रय लेकर के और आचार्य आदि के द्वारा हम जब उन व्यक्तियों को श्रवण करते हैं तो हमारे में रुचि होती है, और रुचि जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं तो जीवन में वैराग्य आदि आता है, मोक्षता आदि आती है, और ये सब आते हुए हमें वह श्रद्धा से युक्त करके अधिकारी बना देती है, और अधिकारी बनने पर हमें उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा जो सार तत्व है वो इस उपनिषद के अंतर्गत है, और वो हम जो है संप्रणयन करने जा रहे हैं, ये यहां चर्चा है, अब फिर कभी होगा भगवान की कृपा। ओम शांति
1: नारायण नारायण नारायण। सही माने में हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संत स्वामी प्रेमपुरी जी की कृपा से यहां पधारते हैं, अद्भुत वाणी ज्ञान बरस रहा है यहां पर, श्रवण करते रहें यह इच्छा होती रहती है, स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों के दर्शन, इनकी वाणी, इनका ज्ञान हमें यहां प्रसाद के रूप में मिल रहा है। स्वामी जी ने बताया हमें कि सोने के पात्र में चंदन की लकड़ी जलाकर यदि हम उसमें लहसुन पैदा करते हैं तो हमारे समान मूर्ख और कौन होगा। और सही माने में हम वही कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना दुर्लभ दे दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, अमूल्य सांसें दी हैं, अमूल्य समय दिया है। मरते वक्त हम करोड़ों रुपए खर्च कर भी एक सांस नहीं पा सकते, उन सांसों को, उन समय को, इस दुर्लभ मनुष्य देह को हम किन बातों में बर्बाद कर रहे हैं? असत पदार्थों के जमा करने में, असत भोगों के, नाशवान भोगों के भोगने में हम अपना सारे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उस प्राणी में जो सोने के बर्तन में चंदन की लकड़ी जलाकर लहसुन का साग बना रहा है, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी की वो समस्या है कि मुझे बाहर से आ रही है और वाकई में कस्तूरी उसके भीतर है। वही हालत हमारी है, आनंद हमारे भीतर है और आनंद हम बाहर संसार में सोचते हैं, ढूंढते हैं, और संसार में आनंद है नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बातें स्वामी जी ने हमें कही हैं उनको हमें आचरण में लाना है। हमें हमारे जीवन में जो असत वस्तुएं हैं उनका त्याग करके सत्य क्या है, केवल ईश्वर सार एक ही है, वासुदेव है सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। जो आनंद है, जो तत्व है, वो हमारे भीतर है। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की है, अगले वर्ष के लिए स्वामी ने समय दिया है, लेकिन अभी दिन और महीना की नहीं हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि जुलाई या अक्टूबर में स्वामी जी पधारेंगे, उसकी तिथि अभी नक्की हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगबरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्यग्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपरः सरञ्च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
5: आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित
4: शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। विचार के लिए अभ्यास के लिए 12वां श्लोक। गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करुणमपि शम्भो तव पदे।

संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातु मुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभोस्त्वं दीनानां खलु परम बन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयो

गुहायां गेहेवा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं वदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी गुहायां गेहेवा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज भगवान शिव की भक्ति के बारे में, शिव भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय को भगवान शिव के साथ जोड़ लेता है, फिर संसार में उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल बताया था कि अपना हृदय परमात्मा में लगा दोगे तो परमात्मा खुद उसके योगक्षेम का भी वहन कर लेते हैं। गीता में भी भगवान यही कहते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी भी भगवान के बारे में यही कहते हैं कि हे शिवा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति अपने हृदय को आपके चरण कमल में लगाएगा उसके सारे योगक्षेम का आप अवश्य वहन करते हैं। भगवत भक्ति से विमुख होकर अन्य अन्य साधनों को अपनाने वालों के प्रति ये व्यंग करते हैं शंकराचार्य जी। जिस सहज साधना के द्वारा अपना प्रयोजन पूरा कर सकता है जीवात्मा, उस सहज साधना को तो करता नहीं और साधन के नाम पर, योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या करता है। तो शिवयोग को छोड़कर अन्य योग के प्रति प्रवृत्त हुए हुए उन योगियों के प्रति यह व्यंग है। सबसे बड़ा योग है शिवयोग। शिवयोग का अर्थ होता है कि अपने चित्त की वृत्ति शिव के प्रति जुड़ जाना, यही परम शिवयोग है। उसके बाद और कोई करते हो तो वो सब हठ योग है, क्रिया योग है, फिर पता नहीं कौन कौन से योग हैं, उन योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। कहीं सिर नीचे करेंगे, टांग ऊपर करेंगे, कहीं टांग ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई मुर्गा बनेंगे, कहीं कुकुड़ बनेंगे, कहीं सर्प बनेंगे। योग के नाम पर आसन हजार है, नहीं बहुत से आसन है, सर्पासन है, मंडुक आसन है। मंडुक माने डेढ़ को, गुजराती में डेढ़ को बोलते हो ना, हिंदी में मेंढक बोलते। मंडुक आसन करेंगे, अरे भाई तुम हजार बार मंडुक बन चुके हो, हजार बार सर्प बन चुके हो, अभी भी तुम्हारे मंडुक बनने की आकांक्षा पूरी नहीं हुई क्या है? योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या है। पेट ठीक रखने के लिए मयूर आसन करो, कहते हैं नहीं क्या है मयूर आसन? अब बढ़ोती में क्या करोगे मयूर आसन? मंडुक आसन किया है, मंडुक आसन करो, मयूर आसन करो, क्या क्या नाम रखा है। वृश्चिकासन करो, वज्रासन करो, ताड़ासन करो, शवासन करो। अरे कितनी बार शवासन किया है बोलो, हिसाब है तुमने कितनी बार शवासन की है? रोज भी करते हो शवासन, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर रामदेव कहेंगे तो शवासन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? शंकराचार्य जी की दूसरी दृष्टि है, तुम करो उस शरीर को ठीक करने के आसन है,
ध्यान देना, ये इनकी निंदा नहीं है, करो, शरीर को ठीक करने के आसन है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो शरीर ठीक होगा नहीं है। शरीर तो बड़ा वो अड़ियल घोड़े की तरह है, मारो चाबुक तो थोड़ी देर चले, चाबुक मारना छोड़ा तो खड़े हो गया है, अड़ियल घोड़ा है ये है। तब सबसे बढ़िया आसन बता रहे हैं, सबसे बढ़िया योग है शिव योग। वास अब शिव योग के बारे में यहां बता रहे हैं। शिव योग का अर्थ होता है मन को ठीक करना, तन को ठीक करना नहीं, ध्यान देना। शरीर पर जो ध्यान देगा, शरीर ठीक रहे ये ध्यान देगा, वो क्रिया योग करे, हठ योग करे, शीर्षासन करे, वीरासन करे, मयूरासन करे, मेंढकासन करे, मंडुकासन करे, कौन कौन से आसन है कर लो, सब हजार आसन कर लो, लेकिन अपने को ठीक रखना चाहते हो, अपने को इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, शरीर और मैं हम अलग अलग हैं, शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। शरीर चाहे जितना ही ठीक करोगे वह खराब होगा ही होगा, और शरीर जितना भी ठीक होगा उससे शिव योग से कोई संबंध नहीं है। मन जितना ठीक होगा उसी से शिव योग सिद्ध होगा। इसलिए यहां शिव योग आंतरिक है, हठ योग बाह्य है, हठ योग क्रिया साध्य है, शिव योग भाव साध्य है। शिव योग भावना से सिद्ध होता है, क्रिया से कुछ नहीं। शिव योग बुढ़ेती में भी कर सकते हो, रोगी हो तो भी कर सकते हो, भोगी हो तो भी कर सकते हो, लेकिन हठ योग रोगी में नहीं कर सकते। तुम रोगी हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे, बूढ़े हो गए तो क्या हठ योग कर लोगे। लेकिन शास्त्र में अनेक प्रकार से हठ योग करने वालों का उल्लेख है, करते हैं, किया हुआ उल्लेख आता ही है, उनके तरफ व्यंग कर रहे हैं शंकराचार्य। कुछ लोग योग करने के लिए गुफा में चले जाते हैं, है ना, सुना है आप लोगों ने, घर बार छोड़ छाड़ कर पहाड़ में, जंगल में जाकर गुफा और कंदराओं में बैठ जाते हैं, कंदमूल खाकर और योग साधना करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आप लोगों ने भागवत के प्रसंग में सुनाई है, मांडव्य ऋषि है, मांडव्य ऋषि पहाड़ के कंदरा में, गुफा में रहकर योग अभ्यास करके योग साधना में थे, और उसी समय में उस राज्य का जो राजा था उसके खजाने में चोरी हो गई, आप लोगों ने सुना है ना, और चोरों ने वो सारी राजकोष को चोरी करके ले जाकर उसी गुफा के अंदर रख दिया, जहां मांडव ऋषि पहले से ही समाधि में, निर्विकल्प समाधि में योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। तो राज आज्ञा हो गई कि चोरी हुई है, संपत्ति कहां रखा है, किसने चोरी की है, चोरों को पकड़ो, संपत्ति को खोजकर पता लगाओ, ले आओ। तो राजधानी में, शहरों में, गांव में, कस्बों में सब जगह खोजा गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब जंगलों में जब गए तो पहाड़ के एक गुफा के अंदर वो चोरी किया हुआ संपत्ति भी सुरक्षित वहीं रखा हुआ था, चोरों ने ले जाकर रख दिया वहां। उन्होंने विचार किया कि यहां कोई आएगा नहीं, यहीं रखते हैं, जब चाहेंगे हम लोग ले लेंगे। और वहीं हुआ मांडव ऋषि
ध्यानमग्न होकर बैठे, उनको कुछ पता नहीं है। तब राजा के जो राजसेवक थे, आज की भाषा में आप लोग पुलिस कहते हो, है? तो उन्होंने देख लिया, कहा कि यही चोर है, ये पकड़े जाने के डर से ये आंख बंद करके बैठा है, पाखंडी कर रहा है। ये यदि चोर नहीं होता तो ये संपत्ति यहां कैसे आ गई? चोर होगा या चोर का भी सरदार होगा यही। तो राजा को संदेश भेजा गया कि आपका संपत्ति राजकोष जो संपत्ति था वो भी पता चल गया और चोर भी पता चल गया। राजा ने विचार किए बिना ही कह दिया, उसको सूली में चढ़ा दो। जी, चोर को तो सूली में चढ़ा दो और जब वो मर जाए, खत्म हो जाए, तो संपत्ति लेकर आ जाओ। उन्होंने चढ़ा दी सूली में, लेकिन सूली में चढ़ाने पर भी मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तो उन लोगों का आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या बात है, मरा नहीं है, तो ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साधारण व्यक्ति होता तो मर जाता, ये कोई असाधारण पुरुष है। वास्तव में ये कोई योगी पहुंचा हुआ योगी था और हमने भ्रांति से ये चोर कह दिया और राजा आज्ञा हो गई, हमने सूली में लगा दी, उसको उतारा। राजा को संदेश भेजा गया कि भाई वो तो मरा नहीं, सूली में चढ़ाने पर भी नहीं मरा। राजा डर गया, कहीं वास्तव में चोर के संदेह में किसी महान योगी को सूली में तो नहीं चढ़ाया गया, खुद जाना चाहिए। राजा खुद आकर देखता है, वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं, समाधि में है। उतरवाया सूली से, बैठा, प्रार्थना करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि कब इनकी समाधि टूटे और हम इनसे क्षमा प्रार्थना करें। बहुत दिनों के बाद उनकी समाधि टूटी और राजा ने क्षमा प्रार्थना की तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम निर्दोष हो, तुम अपने संपत्ति लेके जाओ, तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं ये पता लगाऊंगा कि किस जन्म के कौन से कर्म का फल मुझे ये भोगना पड़ रहा है, ये मैं खुद पता लगाऊंगा। तो आगे की कथा आप लोगों ने सुनी हो कई बार। वो सीधे धर्मराज के यहां पहुंच गए, धर्मराज से कहा कि ये किस जन्म के कौन से कर्म का फल इस जन्म में इस रूप में मुझे भोगना पड़ा, ये पता लगा के बताओ, मैं जानना चाहता हूं। तब चित्रगुप्त को बुलाया और सारे रिकॉर्ड खोजी गई, एक जन्म पहले, दूसरे जन्म पहले, तीसरे जन्म पहले, 100 जन्म पहले तक का हिसाब देखा, लेकिन मांडव्य ऋषि का कहीं ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिस कर्म का फल उनको जीवनते ही सूली में चढ़ना पड़े, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मांडव ऋषि ने कहा कि जब कोई कर्म ही नहीं है तो सूली में क्यों चढ़ाया गया? तो फिर 101 जन्म पीछे का रिकॉर्ड जब खोला तो वहां लिखा हुआ मिला कि बचपन में 101 जन्म पहले मांडव्य ऋषि मनुष्य हुए थे, उस समय में बचपन में खेल खेल में एक कीड़े को पकड़ लिया और एक कांटा उसको चुबो दिया था, बस उसका परिणाम 101 जन्म के बाद मनुष्य योनि में ही सूली में चढ़ना पड़ा। तो आगे की कहानी आप लोगों से पता है कि यमराज को श्राप दे दिया मांडव्य ऋषि ने, अनजान में किए हुए इतना बड़ा कर्म को फल को तुम इस तरह सूली में चढ़ा दिया, सही रूप में न्याय करने नहीं जानते हो, न्याय सही रूप में निष्पक्ष न्याय न करने वाले तो मनुष्य

बहिरपी। अब कुछ लोग घर में ही तपस्या करते हैं, और घर में ही तपस्या करने वालों का भी शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। घर गृहस्थी में ही रहते हुए अपने सारा कर्म करते हुए भी वह साधना करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, ऐसे बहुत से शास्त्रों में भी उदाहरण है। जैसे जनक को आप कहोगे, जनक क्या है, घर गृहस्थी में रहते हुए वो साधना करे हुए हैं, और वहीं उनकी सिद्धि भी मिल गई, घर छोड़ना भी नहीं पड़ा, साधना भी कर ली और सिद्धि भी मिल गई, जीवन मुक्त भी हो गए, उनको घर छोड़ना नहीं पड़ा, पहाड़ में जाना नहीं पड़ा, गुफा में जाना नहीं पड़ा। तो ये भी एक उदाहरण है। बहिरपी, और कुछ लोग जो है घर छोड़ते हैं, गुफा में तो नहीं जाते हैं, डरते हैं, लेकिन जंगल में रहते हैं, उसको यहां वही कह दिया, उसी को वानप्रस्थ कह दो, है वही, घर तो छोड़ दिया और घोर गुफा में नहीं गए, एकांत जगह में कहीं बैठ गए। बने वाद्रि शिखरे, कुछ लोग वन में चले जाते हैं और कुछ लोग आर्द्रि शिखरे, बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ की चोटी में बैठकर वहां योग अभ्यास करते हैं, योग साधना करते हैं, करते हैं भले करें। जलेवा वन्नौवा, और कुछ लोग पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और बहुत हजारों वर्ष तक योग साधना करते हैं और निर्विकल्प समाधि में बैठे रहते हैं। जैसे आप लोगों ने भागवत में सुना, ये सौवरी ऋषि है ना, सुना है नहीं, कहां तपस्या किया सौवरी ऋषि ने, जले पानी के अंदर कब तक साधना की, 10,000 वर्ष, बोलो 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर रहकर उन्होंने योग साधना की, उसी के बल पर वह योग अभ्यास के द्वारा पानी के अंदर निर्विकल्प समाधि में रहते थे, न भूख सताती थी, न प्यास सताती थी, न जरा सताती थी, न रोग न व्याधि, क्योंकि योग अभ्यास में निर्विकल्प समाधि में बैठोगे तो कुछ नहीं। हम योग का खंडन नहीं करने चाह रहे हैं यहां, लेकिन शंकर, क्योंकि भक्ति का प्रसंग है, इसीलिए समाज में भी तो ये कहावत है ना, जिसकी शादी उसी के गीत, बोलते हैं कि नहीं, गीत गाने वाले किसके गीत गाएंगे, बोलो, दुल्हा के गीत गाएंगे, जिसकी शादी उसकी गीत है। तो यहां शादी किसकी है, शिव जी की है, शिव जी के साथ अपनी शादी करानी है तो गीत भी शिव जी की गानी है, है? तो इसलिए यहां भक्ति, शिव भक्ति, शिव योग का प्रसंग होने के कारण उसकी प्रशंसा के लिए अन्यों की अनुपयोगिता ये बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए शंकराचार्य जी ने वो सारे प्रसंगों को उठाया यहां। तो क्योंकि यहां भक्ति का प्रसंग है। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है भागवत के प्रसंग में, सौवरी ऋषि क्रिया योग हठ योग करने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा वह जल के अंदर निर्विकल्प समाधि में जाकर बैठ गए। कितने वर्ष, तो कहते हैं हजारों वर्ष। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, ये जो निर्विकल्प समाधि में योग, क्रिया योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा निर्विकल्प समाधि में जाने की जो बात है, वह बिल्ली के दूध पीने की तरह है, या फिर शुतुरमुर्ग की तरह है, समझ गए आप लोग। कहते हैं, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं है, बिल्ली जब दूध पीती है आंख बंद करती है। किसी ने पूछा बिल्ली से, तू दूध पी रही है आंख क्यों बंद करती है, बोले कोई, मैं दूध पी रही हूं जिस समय, मैं इसलिए आंख बंद करती हूं ताकि और कोई ना देखे। क्या बोलो, मिले क्यों आग बंद कर

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Periya Puranam Discourse in Kannada. The title is Gananatha Nayanar Puranam, presented by Sri H.S. Thyagarajan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Gurubhyo Namaha. Ella Mahaniyarigaligu Namaskara. Gananatha Nayanar Avara Charitrayenu Anta Nodana. Gananatha Nayanar Avara Bagge நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரவரோ கடற்காழி கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன். கடற்காழி அந்தந்தரே ஷீர்காழி அந்த அர்த்த. ஈ ஊரினல்லிதவரு ஷீர்காழியினல்லிதவரு ஏனும் பால ஒள்ளேவரு சிவபக்தரு, அது ஹேளலேபேகாயில்ல சிவபக்தர் அந்தரே பால சிவபக்தரே. இவரிகே ஜனகளன்னு சேர்ஸ்பேகு, ஈ சிவபக்தியல்லே ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶಿವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರಂತಂದರೆ, ತಿರುಮುರೈಗಳನ್ನು ಬರೆಸೋದು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೀರಿ, ನೀವು ಬರೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡಿ, ಹೀಗೆ ತಿರುಮುರೈಗಳಿಂದ ಬರೆಸೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹಾಡೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಡ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ, ಹಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸ. ಹೂಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೀಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಗುಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಒರೆಸುವುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು, ಈ ಥರ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೈವಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಗೊಂಡು ನಾವು ಧನ್ಯರಾದವು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಾವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಗಣನಾಥ ನಾಯನಾರ್ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
0: ಅಪಾನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya.
1: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: हाँ, तो पेट पहले भर गया फिर खाओगे क्या? खाने की जरूरत क्या है? दिया जलाओगे अंधकार को मिटाने के लिए? जो अंधकार ही मिट गया पहले तो दिया क्या जरूरत? हाँ, श्रोतव्यम आत्मा का क्या लक्षण है? हर एक वस्तु का लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि रहस्यत है। लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। अन्य बात लक्षण और प्रमाण तो श्रवण, हाँ वो तो पहले श्रवण करना ही पड़ेगा ना, साधन तो है ना, कहना पर भी तो शब्द ज्ञान है कि नहीं? शब्द ज्ञान के द्वारा ही तो आपको मालूम पड़ेगा ये वस्तु ऐसी है, परंतु सुनने मात्र से नहीं होता है ना, फिर जानना पड़ता है ना। क्यों? आत्मा सिद्ध वस्तु है, आत्मा सिद्ध वस्तु, साधन सिद्ध नहीं है, याद रखना आप, साधन सिद्ध नहीं है। जो वस्तु साधन सिद्ध होता है ना, उसके लिए आप आपकी बात है। हाँ हाँ, प्राणायाम करते रहो, अंतकरण शुद्ध करते रहो। हमारे यहाँ उसका नहीं है, हमारे यहाँ श्रवण से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। वेदांत में श्रवण से अंतकरण शुद्ध होता है, इसीलिए भक्ति दर्शन में भी कहेगा, क्या कहेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शिक्षम आत्मा निवेदन। पहले श्रवण आता है, वेदांत वाक्य भी श्रवण आता है, सांख्य में भी श्रवण आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ भी पहले श्रवण आता है। ब्रह्म जिज्ञासा करने से पहले क्या करना चाहिए? यानी बस श्रवण प्रधान होता है वेदांत में, क्रिया है, क्रिया है। आवे आवे आवे आवे वो है ना, क्या नाम वो, रामदेव, रामदेव तो लाखों को सिखाया है प्राणायाम करो, सबका चित्त शुद्ध हो गया। बोल, सबका चित्त शुद्ध हो गया, सबको सबको ईश्वर दर्शन हो गया, कब ज्ञान हो गया सबको? बोलो, प्राणायाम क्या किए? चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्राणायाम चित्त को स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए। हाँ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आने क्रिया योग है, सब ये सब क्रिया योग है। हाँ हाँ, बस इसमें लगा रखो। तो कल बोला था ना, कल बोला था आपको, क्रिया योग, भक्ति क्रिया योग है, उपासना क्रिया योग है, कर्म क्रिया योग है, ज्ञान योग है केवल द्वारा वेदांत वाक्य का श्रवण करते करते करते, श्रोतम श्रुतम श्रुति वाक्यभ्य। हाँ, श्रवण करो, किससे श्रवण करे? वेदांत वाक्यों का श्रवण करो। वेदांत क्या चीज है? तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण करो, श्रवण करने मात्र से तुमको जो बोध हो जाएगा। हानी बात, जीव और ब्रह्म की जो एकता के ज्ञान है ना, वो ज्ञान तुम्हारा अज्ञान का नाश करेगा। अज्ञान के नाश करने के लिए ना योग है, ना उपासना, ना भक्ति है, ना कलना है, कुछ भी नहीं है। क्यों? किसी शास्त्र ने नहीं कहा अज्ञान को नाश करने के लिए उमुक चाहिए। आप कहोगे कि भगवान ने तो गीता में बतलाया कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश होता है, तो ये तो ठीक है, पर अज्ञान का नाश मैं करूंगा। तुम्हारे अंदर अज्ञान जो है, अज्ञान का नाश भगवान करेगा। हाँ, गीता में बतलाया कि नहीं? नहीं बतलाया। अठारहवां अध्याय में देखना, नौवां अध्याय में देखना। परंतु भगवान कब करेगा? जब बारहवां अध्याय में बतला दिया भगवान ने, हाँ, सर्वाणि कर्माणि मय सिन्नेश मत पर अनन्य ने व जोगे न माम ध्यायन, तो उपास होता अनन्य जोग पूर्वक
4: मेरा ध्यान करता है। तेसा माम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवा विना श्रीरात पार्थ मैयाभिषित चेतसम। इसीलिए मैं बुद्धि निवेशय निवेश मैं अत ऊर्धम न संशय। तो फिर आप कैसे पार करोगे? यदि ज्ञान से या आपके शरण में आने से ही मुक्ति हो जाए तो ज्ञान की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा मैं पहले तो बताया तेरे को ज्ञान न तदज्ञानम जैसा नासितम आत्मन हो। ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नाश हुआ उसको उद्धार करता हूँ। तो ज्ञान कैसे जथे ढंग से समझोग नहीं भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा अभिचेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। बतलाया कि नहीं अवला तू पापे से पापी कहता है आपने को कौन नंबर का पापी है? कौन से नंबर का पापी है? एक नंबर का पापी है या नंबर पापियों पे भी नंबर लगता है याद रखना। हाँ पापियों भी नंबर होता है ना महाराज हम तो महापापी है बोलते नहीं पापा आत्मा हम पापा कर्मा हम पापा संभव हम बोलते कि नहीं। कर्म कांड में जो अंतिम में पंडित लोग कराते हैं कि नहीं पापात्मा हम पापकर्मा हम पाप संभव हम बोलते हैं ना। पाप पुण्य आदि आत्मा में नहीं है याद रखना जो भावना में है नहीं बात। तो वहां भगवान ने बोला आप ही सीधे से पापेभ्यो पापकृतम पापकृत पापकृतर पापकृतम ये तीन प्रत्यय व्याकरण में होता है। व्याकरण में तीन प्रत्यय होता है पापकृत पाप करने वाला पापकृत तरह उससे ज्यादा पाप करने वाला पापकृत तमह। जैसे आप लोगों को यहाँ है ना इंग्लिश में भी है ना ऐसे शब्द क्या तो गुड बेटर बेस्ट अच्छा के लिए है मंद के लिए क्या है? हाँ होता है कि नहीं बेट बस बस हो गया ना तीसरा नंबर का है। हाँ गुड बेटर बेस्ट हुआ अच्छा के लिए पुण्य पुण्यात्मा पुण्य न पुण्यम कर्म नहीं थी पापे न पापम लोकम नहीं थी आने बात। तो तीन नंबर के जो पापी है तीसरा नंबर का डरना नहीं हमारे नौका में बैठ जा। कौन सा नौका? ज्ञान रूपी नौका। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि वृजिनम पापम तरिष्यसि तर जाएगा कब? ज्ञान रूपी नौका में बैठेगा तो। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम पापम संतरिष्यसि सम्यक तर जाएगा। तो मतलब है भगवान कहते मैं ज्ञान रूपी नौका संसार में छोड़ा हूं इस ज्ञान रूपी नौका में जो भी बैठ जाएगा वो पाप रूपी संसार रूपी। हाँ इसीलिए विवेक सुरामणि में शंकराचार्य लिखा है क्या पापी लोग जो है ना संसारी लोग प्रार्थना करते गुरु की बात जाकर कथम तरेयम भव सिंधु मेतम कावा गतिर में कथम अस्थि उपाय जाने न किंचित कृपया भवम हो संसार सिंधु स्तरण अस्थि उपाय। हे गुरु जी बताओ कथम तरेयम भव सिंधु मेतम एतम भव सिंधुम संसार को क्या बोलते हैं? सागर संसार सागर भव सागर भव सिंधु भव कानन महाकानन संसार कानन इसका बहुत से नाम है। तो शिष्य कहते कथम तरेयम भव सिंधु मेतम हे गुरुजी ये संसार सागर को मैं कैसे पार जाऊं? जाने न किंचित मुझे कुछ भी पता नहीं इस संसार सागर से तैरने का रास्ता क्या है कुछ भी पता नहीं कैसे मैं संसार सागर से पार जाऊंगा। जाने न किंचित कृपया अवमान भो कृपा करके मेरी की रक्षा कीजिए। गुरु जी क्या होता है महाभिष्ट विद्वान तब नास्ति अपाय आश्वासन देते निर्भय बना देते हैं गुरु जी मत डर भयभीत मत होना महाविष्ट विद्वान तब नास्ती अपाया तेरा नाश नहीं होगा संसार सिंधु स्तरण अस्थि उपाय संसार सागर सो पार करने के उपाय है, साधन है। जेने भी जाता है जतैश्य पारम, जति लोग जिस रास्ता से गया वो रास्ता मैं तेरे को बताऊंगा, तू भी पार चले जाएगा। देखा तो पार जाने का रास्ता क्या, भव सिंधु पार करने का रास्ता क्या, संसार कानन को पार करने का क्या है, ज्ञान रूपिनु का। हाँ, कर्म भी साधन है, कर्म साधन है चित्त शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। योग है, कर्म है, ये सब अंतकरण की शुद्धि के लिए। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारे न, है ना। तत्व ज्ञान होगा विचार से, और कोई रास्ता नहीं है, याद रखना। हाँ, तो वेदांत में श्रवण प्रधान है, श्रवण प्रधान। वेदांत में सुनो सुनो, इसीलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धिपूर्वम कृतम पावम कृष्णम दहति बन्निवत। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, ये जो ज्ञान की बात सुनते हो, रोज सुनते हो, ये ब्रह्म है, कुटस्थ है, साक्षी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तत्त्वमसि महाराज का जो सुनते हो, इसका क्या फल है? ये परोक्ष ज्ञान, अस्ति ब्रह्म इति परोक्ष ज्ञानम एतत्। ब्रह्म है, ये जो हम लोग चिल्लाते हैं ना, इसका नाम परोक्ष ज्ञान तुम रोज सुनते हो। हाँ, अस्ति ब्रह्म इति सिद्ध ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम एव तत्। ये परोक्ष ज्ञान अब तुम किसी महापुरुष से सुना, अपने गुरु से सुना, किसी संतों से सुना, तो सुनने का फल क्या है? हाँ, ब्रह्म विज्ञानम बुद्धिपूर्वम कृतम पापम, जान बुझ करके तुमने जो पाप किया, तमाम पापों को जला करके भस्म कर देगा, याद रखना। तो कहते हम इतना दिन सुनते हैं पाप जलाता है कि नहीं जलाता, तुमको क्या मालूम जलाया कि नहीं जलाया? अगर नहीं जला तुम यहां नहीं आते, यहां आते हो इसीलिए जलाया है, आनी बात। शब्द ज्ञान होते ना, हमारे एक न्याय दर्शनकार था बंगाल का, गदाधर भट्टाचार्य, अचिंत्य शब्द शक्ति ही, शब्द के अंदर शक्ति है कि वो तू शक्ति को विषय में तुम विचार नहीं कर सकते हो। हाँ, अचिंत्य है, इसका चिंतन का विषय नहीं है, शब्द के अंदर शक्ति है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, एटम बम है, एटम बम। हाँ हाँ, ये एटम बम है, भीतर जला कर जा करके अपने पापों को, दुष्ट कर्मों को, अनंत कर्मों को जला करके भस्म करता, समझेंगे नहीं? ये वेदांत वाक्य सामान्य वाक्य नहीं समझना। हाँ, सुनने के लिए भी समझना, जन्मांतरीय पुण्य उदय हुआ हो तब सुनने को मिलता है। इसीलिए स्वामी जी कहते, देखो शब्द के अंदर जो शक्ति है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि आपको स्तुति करे कोई तो आपको मन कैसा हो जाता है? कान के देखो, शब्द तो हमारे मुंह में है, आपके कान में पड़ा, कान से आपके भीतर गया, भीतर गया के मन रूपी कमल को खिला दिया कि नहीं? यदि आपकी स्तुति किसने किया तो आपका चित्त कैसा हो जाता है? खिल जाता कि नहीं? तो यदि किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपकी गाली दी, हाँ, तो आपका चित्त कैसा हो जाएगा? गाली तो हमारे मुंह में है, निंदा हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों सिकुड़ गया, मुरझा गया? चित्त रूपी कमल, माने रूपी कमल क्यों मुरझा गया, ये बताओ। हाँ, क्यों? शब्द तो हमारे मुंह में है, आपका चित्त क्यों बिगड़ गया?

आकाश शब्द आकाश का गुण है। आकाश हुआ तुम्हारे कान के द्वारा तुम्हारा हृदय आकाश में गया और तुम्हारे हृदय आकाश में जाकर तुम्हारे हृदय रूपी कमल को खिला दिया था, मुरझा कर दिया हाँ? इसके मतलब क्या है? इस शब्द के अंदर शक्ति है। यदि आपका हृदय कमल मुरझा गया हो तो खुल गया खिल गया हो कमल तो कैसे मालूम पड़े? तो मुख कमल खिल जाएगा। हृदय कमल खिलने से मुख कमल खिल जाएगा, प्रसन्नता हो गई। तो तुम क्या करोगे? आपने बत्तीसी देखा होगा हमको और हम भी आपने बत्तीसी आपको देखा ही आई आई आई आई। सज्जन से सज्जन मिले तो क्या होगा? 10 से 10 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले खिल जाए 7 करोड़। 4 मिले 2 मित्र है तो ये दुआ किधर होगा? दुआ के बाद 4 हो गया, 4 मिले 64 खिले। 64 किधर है? डॉक्टर के पास होगा। चार मिले 64 खिले 20 रहे करज और हाथ जोड़ करके एक दूसरे के स्वागत करते हैं। हाथ जोड़ करके एक दूसरे का स्वागत कर दे। सज्जन से सज्जन मिले खिले 64 करोड़। ये रोए रोए 64 करोड़। हाँ खिल जाए 64 करोड़। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ क्या? एक शब्द से हुआ। और 64 किलो मुरझा जाए तो किससे? वही शब्द से। आने बात तो शब्द के अंदर असिंचय शक्ति है। ये वेदांत वाक्य जो श्रवण करते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यश जाता है आगे ने 4 सूत्र याद करा दिया था। याद है कि नहीं? याद नहीं है? नहीं, वेदांत ब्रह्म सूत्र का जो 4 सूत्र चतुर्सूत्र याद कराया था। और अपना हाँ शास्त्र नित्व जन्माद्यश जाता है तत्व समन्वय नहीं याद। हाँ इतना भी याद नहीं है तो इतना याद किया पर सब याद करा करके दिया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: More advanced vows, such as those taken with a guru for a lifetime. Gurudeva established three such vows for his shishya to fulfill: the shakahara or vegetarian vrata, which governs diet; the parampara or lineage vrata, which governs spiritual studies; and the dasamabhaga or tithing vrata, which governs finance. The vegetarian vow builds character through the control of appetite, which is control of the instinctive mind. In other words, as our control of appetite increases, the control over the other instinctive emotions, such as anger and jealousy, also improves. It all moves along together. Shakahara Vrata, of course, starts with avoiding the non-vegetarian foods. It also includes eating a healthy, balanced diet, thus avoiding chemically adulterated foods and minimizing junk foods and even frozen foods. The vow also includes the virtues of mittahara, moderate appetite, not eating too much, and it includes not eating between meals. The parampara, or lineage vow, builds character through control of mental and philosophical ramification, which is control of the intellect. Traditionally, giving all loyalties to a lineage precludes all extraneous training and requires closing off intellectual inroads to other lineages, not reading their books, not taking their courses. This vow harnesses the tendency to jump from teacher to teacher in search of new studies and techniques, rather than staying with one's current study and set of techniques and perfecting it. Gurudeva insightfully describes this vow when he says that it is a total focus demanded of the shishya by the shishya himself, so that learning of one unique path may mature past intellectual states into completely experiential knowing. The tithing vow builds character through control of money, which is the control of desire. Lots of desires are fulfilled by spending money to acquire possessions. As soon as we get our paycheck, we rush out to the store to buy something we just can't live without. After a few months, we stop using it altogether and find something else we just can't live without and buy that. In fulfilling the Dasama Bhagavata, whenever we receive money, the first thing to do is to give 10% of it to God. This practice spiritualizes the remaining 90% and helps us use it wisely. An additional step in fulfilling the Dasama Bhagavata is to develop a household budget and then spend the month's income according to the agreed-upon plan. In conclusion, embrace religious vows, rules and observances, and never waver in fulfilling them. Honor vows as spiritual contracts with your soul, your community, with God, gods, and guru. Take vows to harness the instinctive nature. Fast periodically, pilgrimage yearly, uphold your vows strictly, be they marriage, monasticism, non-addiction, tithing, loyalty to a lineage, vegetarianism, or non-smoking. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है एवं गुरु को ऐसा अध्यात्म विकास के लिए गुरु आवश्यक है. कई बार हम जो है भौतिक उन्नति, सुख सुविधा, समृद्धि के लिए गुरु निश्चय करते हैं, परंतु भगवत भक्तजन गुरु की आवश्यकता है अध्यात्म विकास के लिए. भौतिक विकास के लिए पुरुषार्थ की प्रयोजन है. प्रारब्ध से जो आपको मिला है, पुरुषार्थ के द्वारा जो आप कर सकते हैं वो आप प्राप्त करें, परंतु अध्यात्म विकास, अध्यात्मक अगर चेतना का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है. और वो गुरु कौन हो सकते हैं? गुरु कौन है? शास्त्र का निश्चय है, एको देवो नास्ति ततद् द्वितीयः योजत् हृदय सयाति. एको देव नास्ति ततद् द्वितीयः. जिनको आप गुरु रूप से वरण किए हैं उनके हृदय में वही सत्ता है जो आपके हृदय में है. विषयों के वासना से, कर्मों के संस्कार से आप उस हृदय स्वर से बेखबर है। गुरु जो है उस हृदय के ईश्वर से आपको संबंध बना देता है, परिचय करा देते हैं। इसलिए जो उपदेशता है, जो मार्गदर्शन कराते हैं, वो गुरु है। गुकार अंधकार स्यात् रुकार तन निरोधक। इस अंधकार संसार में जो आपको मार्ग दिखलाते हैं वो है गुरु। पातंजलि ऋषि लिखते हैं सूत्र, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वही एकमात्र गुरु है, और जिसको आप गुरु रूप में मान रहे हैं, ये सब सुनकर कैसा लगता है, वही जब गुरु है तो उन्हीं को क्यों ना पकड़ लिया जाए। नारायण शास्त्र पढ़ करके, किसी मंत्र को आप चयन करके नित्य निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उसका जप कर सकते हैं, परंतु वही मंत्र जब किसी दैवी व्यक्तित्व के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उस मंत्र में एक सौकर्ज सुकरता और एक उत्कर्षता आ जाती है। कल हम लोगों ने यही विचार कर रहा था कि मंत्र अनेक प्रकार का हो सकता है, चेतन अर्धचेतन मृत, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। जब आप किसी ग्रंथों के द्वारा ग्रंथ अध्ययन करते हुए किसी मंत्र को आपने उठा लिया और उस मंत्र को आप जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस मंत्र में शक्ति नहीं है, परंतु उस मंत्र को चैतन्य चेतना युक्त बनाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं विधि विधान से कोट्यातु मंत्र चैतन्यम, एक करोड़ अगर जप किया जाए विधि पूर्वक, जैसा शास्त्र में विधि है, तब जाकर के वो मंत्र चैतन्य विशिष्ट होते हैं। और जब मंत्र चैतन्य विशिष्ट होता है तब जाकर के वो मंत्र हमारे जीवन को कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। और जब हम किसी दैवी व्यक्तित्व के पास वो मंत्र को लेते हैं तो उस मंत्र में वो चैतन्य को प्रकट करके वो देते हैं, और इसीलिए गुरु परंपरा में उस मंत्र की एक मौलिकता, एक महत्व है। क्योंकि गुरु जब उस मंत्र को हमें देते हैं तो उस मंत्र में एक चैतन्य, मंत्र को चैतन्यवान बना करके अर्पण करते हैं, और उस मंत्र के साथ जब अपना संबंध हम जोड़ते हैं तो उस मंत्र के द्वारा जीवन, अर्थात आप पढ़ करके ऐसे प्राप्त करने से आपकी साधना, आपकी चेष्टा, आपकी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और जब गुरु से वो मंत्र मिलते हैं तो उतना साधना तो है, साधना की जरूरत तो है, परंतु चूंकि मंत्र चैतन्य विशिष्ट है तो उस मंत्र में एक प्रकार के तृप्ति, शांति, प्रशांति वो आपको मिलती है। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन में गुरु की आवश्यकता है। ईश्वर के अस्तित्व को निर्णय देने वाला गुरु है, और गुरु के अस्तित्व को निर्णय करने वाला वो हृदयेश्वर है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो, इस जीवन के नाव को, जीवन नैया को अगर पार लगाना है तो एकमात्र गुरु चरणाश्रित होकर के ही जीवन को पार कर सकते हो।

ఆచార్య శంకర్ గురు చరణాంబుజ, గురు చరణ కమల్ కు ఆశ్రయ కర్కే నిర్భర్ హో జాఓ. నిర్భర్ అగర్ ఆప్ గురు చరణ మే హోతే హై, గురుదేవ్ మే హోతే హై, తో ఆప్ నిర్భయ కు ప్రాప్త కర్ సక్తే. ఐసా తో కోయి వ్యక్తి హో జీవన్ మే జిన్కే పాస్ ఆప్ పూర్ణ రూప్ సే खुल सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, बता सकते हैं. हमारे जीवन में जो भी न्यूनता है उसको ऐसा कोई सत्ता हो, व्यक्ति हो, जिनके पास हम रख सकते हैं. और जिस दिन हम उस प्रकार से व्यक्तित्व को अर्पण कर सकते हैं जीवन को, तो वो जो गुरु है जिसको हमने चयन किया बनाया, उनके द्वारा ही इस जीवन के परम रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं. उस दिन शंकर जयंती के दिन वही विचार हम लोगों ने किया कि बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत विद्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है. अगर जीवन में बहुत आवश्यक और जरूरी है तो एक समर्पण. नारायण कई बार लगता है कि शायद पढ़ करके जीवन में जो सरलता वो हमने गवा दी है, अध्ययन करके और डिग्रियों के द्वारा जो सरलता, ऋजुता, जो समर्पण की एक संभावना वो शायद हमने गवा दी है. और जिनके जीवन में वो नहीं है, डिग्री नहीं है, अध्ययन नहीं है, परंतु उनके जीवन में एक समर्पण है, एक त्याग है, एक अर्पण है, वो जीवन बड़ा मधुमय हो जाता है. जितने भी आचार्य हुए हमारे, चाहे तुकाराम, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, आनंदमयी मां, वर्तमान में आनंदमयी मां, रामकृष्ण, विवेकानंद, विवेकानंद जी को तो फिर भी पाश्चात्य ज्ञान थे, रामकृष्ण कौन से ज्ञान में, वो सेगांव के महाराज जी कौन से विद्वान थे, कौन सी डिग्री थी उनके, परंतु उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया. क्यों? क्योंकि किसी के पास वो खुद को अर्पण कर दिए. इसलिए भगवत भक्तजन, अध्ययन अध्यापन सब ठीक है, अगर जीवन में समर्पण हो तो. अगर समर्पण ही नहीं है तो जीवन, आप कितना भी डिग्री लेकर के चले, उस डिग्री के भार से आप बोझिल होते गए, परंतु जीवन में जो हल्का होना था, ताप रहित होना था, व्यथा रहित बनना था, वो नहीं बन पाए. इसलिए व्यक्ति जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व के पास अर्पण करे कि सारा ईगो, सारा अहम जो है एक तरफ रख करके उस गुरु के चरणों में खुद को सौंप दे, अर्पण कर दे. और जिस दिन इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं, उनके पूरा दायित्व जो है गुरु ले लेते हैं. इसलिए आचार्य शंकर बारंबार कह रहे हैं कि बस चाहे वो चांडाल क्यों ना हो, अगर उनके प्रज्ञा उस चैतन्य में है, दृढ़ प्रज्ञा वाला है, तो वो चांडाल क्यों ना हो, मेरे गुरु है. इसलिए भगवत भक्तजन टीकाकार लिखते हैं, गुरु की महिमा आचार्य शंकर के जीवन में एक अमौलिक तत्व है. अध्यात्म जीवन में गुरु की आवश्यकता है. गुरुम तम ददर्श, आनंद गिरी जी इस श्लोक के व्याख्यान में, टीका में लिखते हैं, गुरु ही वो तत्व को दिखला सकते हैं. इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता. ये जो उस दिन हमने बताया, मई एवं मना याधत्सो भगवान कृष्ण के वाणी को, तो ये हम भी चाहते कि हमारा मन और बुद्धि अर्पण हो, परंतु कैसे अर्पण हो ये कौन बतलाने वाला है? एकमात्र गुरु है जो अपने जीवन में जो भी त्रुटि है उसको दूर करते हुए उस परम तत्व को
अर्पण करने की विधि को सिखलाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अध्यात्म जीवन में गुरु की एक महिमा है। आचार्य शंकर के जीवन में भी जैसे वो गुरु के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार उनके जीवन में तोटक नाम के जो शिष्य हुए, तोटकाचार्य, उस दिन जो स्तुति हम लोगों ने सब मिलकर के पढ़ा, उनके जीवन में भी हमने वही देखा। कुछ भी नहीं है, परंतु गुरु कृपा के द्वारा वो शास्त्र के निर्यास को प्राप्त किया, और वो स्तुति के द्वारा, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो स्तुति के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब हमने गुरु बनाया किसी को, उस अस्तित्व के प्रति किसी भी प्रकार के संशय न रखो। कई बार ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार, उनके आचार देख करके लगता है कि कैसा लग रहा है, परंतु वो हम निर्णय नहीं कर सकते कि उनके आचार आचरण कैसा है। दुर्वासा मुनि को देखते हैं तो कितना क्रोधा आविष्ट है चित्त उनके, परंतु क्या वो सचमुच उस क्रोध से युक्त थे, अथवा किसी और के लिए क्रोध को एक अवलंबन बनाए रखे थे। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में कभी भी गुरु अगर किसी को अपने बनाया, तो उस गुरुदेव के प्रति मन में किसी भी प्रकार के संशय न रखे, गुरु के प्रदत्त मंत्र पर विश्वास करके नित्य निरंतर उस देव के आराधना करे। गुरु वो है जो आपके अतीन्द्रिय अस्तित्व से परिचय करा देते हैं, उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने का मार्ग बतला देते हैं, चलना आपको है। इसलिए कई बार हम सोचते गुरु कर लिए और न तो मंत्र की चैंटिंग की जरूरत है, न साधना की जरूरत है, न संशोधन की जरूरत है। भगवत भक्तजन, गुरु की आवश्यकता केवल मात्र उस तत्व से, उस चैतन्य से, उस भगवान से परिचय कराना, परंतु परिचय कराने के बाद उस भगवान तक पहुंचना तो आपको है। इसीलिए पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु को निर्णय देते हैं, निश्चय करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में ऐसा एक गुरु आवश्यक है, जो हमारे प्रत्येक जीवन में आध्यात्मिक विकास करना जो चाहते उनके लिए जरूरी है। और जिस दिन हम गुरु को ग्रहण करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को अनुसरण करते हैं साधना के लिए, उस दिन से हमारा आध्यात्म जीवन का शुरुआत होता है। इसलिए जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता है। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उसी को कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी जोनी में क्यों ना हो, अगर चैतन्य प्रज्ञा ज्ञान वो है उनमें, तो वो हमारे गुरु है। अब गुरु कौन ज्ञान से युक्त है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणिम, ये जो शास्त्र वचन है, इस पर आनंद गिरि जी कुछ प्रकाश देते हैं, कल उस पर विचार करेंगे।